AI. Mr. Vimin Balakrishnan ne kaha ki nayi institutions would also be necessary amid loud calls for AI safety from top AI tech leaders, safety researchers and lawmakers. Jo warn kar rahe hain is samay ki AI ki jo capabilities hain, they are advancing faster than the human ability to safely manage them. Well, देखने की बात यह है कि इस समय हम सभी अवेयर हो रहे हैं इस बात से कि AI हमसे कहीं आगे बढ़ता जा रहा है. शायद आपने और हमने ये सोचा भी नहीं था जो कि चीज़ आज के दिन में हमारे सामने ऑलरेडी आ चुकी है. No, I'm not getting pious suddenly. इतनी मैं प्रेयर्स में नहीं घुस गई हूँ, but this is one of the best गानास that is playing. रामायणा के साउंड ट्रैक से सुनते हैं साथ साथ रेडियो मस्ती 24/7. थोड़ी मतलब भगवान का नाम लेने में बुराई भी नहीं है. गुड मॉर्निंग.

0: भाई ऐसा है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सिंगापुर में एयर की कंप्लेन करूंगी। ऑनेस्टली मैं दिल्ली से हूँ यार, और दिल्ली के लोग कोई हक नहीं बनता उनको सिंगापुर में आके एयर क्वालिटी के बारे में कंप्लेन करना। राइट, सीरियस हेडलाइंस With a not so serious vibe.
1: लेकिन आदत भी तो एक चीज होती है ना, जो कि इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अब पूछिए मत।
0: रेडियो मस्ती 24/7 पर सिंगापुर के PSI की बात हो जाए। Well, कल ही के दिन में एयर क्वालिटी इन पार्ट्स ऑफ सिंगापुर वाज इन द अनहेल्दी रेंज एंड वेस्टर्न सिंगापुर ने क्रॉस किया द थ्रेशोल्ड ओवरनाइट एंड रिकॉर्डेड अ 24-आवर PSI ऑफ 105 सुबह के 6 बजे की बात हो रही है। एयर क्वालिटी इन द सेंट्रल रीजन हैड एंटर्ड द अनहेल्दी बैंड सैटरडे शाम को ही, फॉलोड बाय द ईस्टर्न रीजन एट मिडनाइट। PSI रीडिंग्स फॉर सेंट्रल एंड ईस्टर्न रीजन्स हिट 127 एंड 114 एट 6 AM। Our air quality in the other two regions of Singapore were in the moderate range, with the north at 89 and the south at 94. PSI readings तब से थोड़े dip तो हो चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से आपने देखा होगा कि in and out of the unhealthy range होते चले जा रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं इसके लिए? Well, regional update में Sunday को regarding the weather and haze situation and outlook, National Environment Agency ने कहा कि dry conditions are forecast to continue over parts of Southern Association of Southeast Asian Nations, that is ASEAN की बात कर रही हूँ मैं, excluding the peninsular Malaysia as well as the northern and central parts of Borneo and Sumatra. Situation जो है, well, it's expected to stay elevated in fire-prone regions experiencing prolonged dry conditions. And एक continued risk है जो कि severe transboundary haze occurrence का बिल्कुल exist कर रहा है इस समय। NEA ने साथ ही में नोट किया है that dry weather had continued over parts of southern ASEAN region overnight except for showers over peninsular Malaysia and the northern and central parts of Borneo and Sumatra. Well, अब देखने की बात यह है कि isolated to scattered hotspots detect किए गए Kalimantan and southern parts of Sumatra में, जहां पर few hotspots जो हैं, they were found elsewhere in the southern ASEAN region. Well, ASEAN region की unhealthy range की बात तो हम कर ही रहेंगे, लेकिन Singapore की unhealthy range में मजा नहीं आ रहा है यार। I hope things get better, don't you? Well,
1: चलिए सुनते हैं आवारा बंटू के साउंडट्रैक से ब्यूटीफुल सा गाना। आफ्टर ऑल तेरा मेरा रिश्ता तो है ही पुराना। गुड मॉर्निंग।

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere anytime.
1: भाई ऐसा है कि हर किसी की ना एक कहानी होती है सीरियसली, और वो जो कहानी होती है ना बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। मैं तो बड़ी ना हैरान होती हूँ इस बात से कि यार इतने लोग हैं इस दुनिया में, कितनी पॉपुलेशन आप सोच सकते हैं, और हर इंसान की एक यूनिक कहानी होती है। Isn't that amazing guys? I think it is, right? Monday Coffee का best partner, the morning show on Radio Masti 24/7 News, views and a pinch. Radio Masti 24/7 पर, जी हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने, it is time for the Bollywood update. और इस घंटे का अपडेट कुछ ऐसा है कि बात हो रही थी राजकुमार राव के साथ में, और राजकुमार राव ने एक ऐसी बात कही कि मुझे लगा यार who could have believed that. So, अभी फिलहाल एक फिल्म आने वाली है इनकी, which is called प्रहार, the untold story of उज्जवल निकम. एंड ये जो फिल्म है ना, जैसे जैसे अपनी थिएट्रिकल रिलीज की तरफ जा रही है, तो हमारे जो ये लीड एक्टर है राजकुमार राव, ही इज पुलिंग आउट ऑल द स्टॉप्स टू ऑब्वियसली गेट पीपल इंटरेस्टेड कि भाई जाके उनकी फिल्म देखें. तो ही अपीयर्ड ऑन द अमिताभ बच्चन के जो KBC शो है, और उसमें जाकर अपनी को स्टार वामिका गाबी के साथ में एंड फॉर्मर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम के साथ में टू प्रमोट द बायोग्राफिकल कोर्टरूम ड्रामा. अब ये जब इन्होंने प्रमोट करना शुरू किया तो बताना शुरू किया कि भाई क्या क्या अपने यादें अपनी जिंदगी की, और एक बात इन्होंने ये कही कि भाई मैं आपके घर के बाहर खड़ा होता था, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के मन्नत के बाहर भी, जस्ट टू गेट एन आइडिया, अ ग्लिम्स ऑफ द आइडल्स. अब आप सोच सकते हैं कि अमिताभ बच्चन भी अपनी बातें कर रहे हैं कि हाँ भाई मेरा एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद शाहरुख खान एंड ऑफ कोर्स व्हाट ही एडमायर्स मोस्ट इन द सुपरस्टार एंड ऑल दैट. सो लगता है ना कि यार कि किस तरह से ये लोग, जिनको हमें ऐसा लगता है कि ये लोग सभी पहुंचे से लोग हैं इस टाइम पर. राजकुमार राव इज अ ग्रेट एक्टर, राइट, एंड नोबडी कैन इमेजिन दैट ही एक्चुअली वुड बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देयर हाउसेज लाइक अमिताभ बच्चन एंड शाहरुख खान हाउसेज, जस्ट टू सी कि यार एक बार ये लोग मुझे दिख जाए, क्योंकि इंस्पिरेशन इतनी ज्यादा होती है कि ये लगता है कि एक बार ये दिख जाएंगे तो मेरी जिंदगी बन जाएगी. दैट्स वेरी क्यूट, राइट, एंड दिस गाइज अ वेरी वेरी ऑनेस्ट इट सीम्स. बट ग्राउंडेड रहे, ऑनेस्ट रहे, एंड दैट इज द बिगेस्ट अट्रैक्शन, डोंट यू थिंक? सारा हफ्ता भाई ऐसा है, जान तो निकालता है काम, लेकिन उस हफ्ते के बाद जो सेटिस्फेक्शन होती है, नथिंग टू बीट दैट, राइट? गुड मॉर्निंग एवरीवन.

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस जहाँ न्यूज भी होती है।

0: 10 on Radio Masti 24/7. जी हाँ, जहाँ हमने अभी अभी बात करी PSAT levels की in Singapore. Well, I need to take a look around the region. And आपने Bangkok के बारे में news पढ़ी है, देखी है या नहीं? सुबह का असली वेक अप. Alright, thousands of Bangkok residents कल के दिन में, जी हाँ, संडे को काफी ज्यादा floods which have been triggered by days of heavy rain in the Thai capital, and of course उसकी वजह से घर और roads जो हैं बिल्कुल ही हिल के रह गई, and some are starting to dry out their homes and their belongings. 4,900 लोगों से भी ज्यादा इवैक्यूएट किए गए हैं टू शेल्टर्स विद अराउंड 52,000 हाउसहोल्ड्स अफेक्टेड बाय द फ्लड्स, जिसकी वजह से प्रॉम्प्ट किया है डिजास्टर डिक्लेरेशन अक्रॉस द कैपिटल. जी हां, 330 मिलीमीटर्स ऑफ रेन इट फेल इन सम एरियाज ऑफ द सिटी बिटवीन थर्सडे एंड संडे. और ये रिपोर्ट करते हुए वेदर एजेंसी ने ये कहा कि थाईलैंड डेफिनेटली इज यूज्ड टू वेट वेदर एंड सितंबर इज द पीक ऑफ द रेनी सीजन, लेकिन बहुत से बैंकॉक रेजिडेंट्स का ये कहना है कि ये साल तो हद ही हो गई है. कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर जो है अंडर वाटर रहा 30 घंटे तक, एंड दैट इज ऑन द प्रेम प्रचाकोन कनाल ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द कैपिटल, एंड दिस टाइम दे से द वाटर लेवल इज हायर देन द 2011 फ्लड. बहुत सारे लोग साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो हमारी थाईलैंड है और उसी के बीच में बैंकॉक है, 2011 जो था बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाला था, 500 लोगों से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे और बहुत से घर डैमेज हो गए थे. सो वेल दे आर ऑलरेडी कंपेयरिंग इट टू 2011. अब देखने की बात यह है कि फिलहाल पानी और बिजली तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन पेडेस्ट्रियंस इन प्लास्टिक रेन पोंचोज दिखते चले जा रहे हैं आपको. कुछ कुछ तो घुटने तक पानी है और ग्रोसरी स्टोर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इनफैक्ट फ्लोट कर रहे हैं अपने बिलोंगिंग्स इन प्लास्टिक टब्स अक्रॉस देम. बात ये भी देखी गई कि बहुत से वाटर लेवल्स जो है हर जगह बैंकॉक के नेटवर्क ऑफ कनाल्स में इज वेरी वेरी हाई, और पूरे के पूरे संडे बारिश हुई है, और साथ ही साथ में ऐसा लग रहा है कि मंडे शायद थोड़ा सा कम हो जाएगा. तो वेल, लेट्स होप दैट द इंटेंसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इज गोइंग टू गेट मोर इन कंट्रोल टुडे, एंड डेफिनेटली देर इज नो मोर लॉस एंड देर इज नो मोर डैमेज टू द प्रॉपर्टी एंड द पीपल. Well, hundreds of city schools आज के दिन में बिल्कुल बंद किए गए हैं और work from home की बात भी हो रही है.
1: गुलाबी साड़ी अणी लाली लाल लाल.
0: चलिए चलिए बात करते हैं गुलाबी साड़ी की और धमाल फोर की और साथ ही साथ में वी इंडस के डांडिया की. Right after I stop speaking, आप सुन पाएंगे इसको. टिकट ली कि नहीं ली?
2: This Navratri season, skip the treadmill. Because the best kind of cardio comes with Dandiya Sticks. We Indus presents Bollywood Dandiya Night. Where the colorful festive vibes meet Bollywood ka music, energetic dancing, good Indian food and exciting surprises.
3: Suat.
2: Join Kariye Inka celebration on Saturday, 10th October, 6 p.m. onwards at Khalsa Association Building, Singapore. Tickets at $30 per adult and $15 per child with group discounts available. Call 9022-1210. Buy your tickets now. Call or WhatsApp 9022-1210.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, behnor bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: और अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सिंगापुर के स्टॉक्स थोड़े हायर क्यों रहे फ्राइडे को, तो वेल लेट मी टेल यू एग्जैक्टली व्हाई. गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज रेणुका विद यू ऑन रेडियो मस्ती 24/7 द मॉर्निंग शो. सीरियस हेडलाइंस with a not so serious one.
1: Singapore ke stocks ended the week slightly higher despite a cautious mood. Kyun? Because Chinese President Xi Jinping jo pahunche US state visit par with President Donald Trump aur wahan par unhone discuss kiya the disputes over tariffs and AI. Chahe ye baatein unresolved hi rahi. Well, Straits Times Index जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ गया September 18 close करते हुए to finish at 5711.12 on September 25. It had climbed to 5723.76 on September 22 but gave up some of those gains as a sell-off in US government bonds pushed yields higher. Saxo UK investor strategist एक हैं जो उन्होंने ये बताया कि aggressive unloading of US bonds on September 24th as the 10-year Treasury yield touched 5.23%, a 19-year high, and a 30-year yield rose above 5.5%, its highest level since 2004. Yields जो हैं वो ease off हो गई थी September 25th तक, but remained elevated. US Treasury data put the 10-year yield at 5.17% and the 30-year yield at 5.49%. Bond yields rise when their prices fall. इन्फ्लेशन जो इस समय अभी भी फेडरल रिजर्व के 2% टारगेट से ऊपर है, इन्वेस्टर्स हैव बीन वेइंग द प्रॉस्पेक्ट ऑफ अनदर क्वार्टर पॉइंट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज बाय द यूएस सेंट्रल बैंक इन अक्टूबर. सिंगापुर के जो तीन लोकल बैंक्स हैं और परफॉर्म कर चुके हैं द ब्रॉडर मार्केट ओवर द वीक कंपेयर्ड विद द सितंबर 18 क्लोजर. डीबीएस ने गेन किया 1.43% टू एंड एट $78. ओसीबीसी रोज 1.88% टू 32.01 एंड यूओबी एडेड 1.8% टू $42.57. Listed companies this summer, they are going to be held to higher standards of transparency and shareholder communication January 1, 2027 se. Toh bilkul, aap as investor aur bhi zyada baatein sun sakenge aur jaan sakenge. Sunte hi gaana, welcome to the jungle. Aur jungle ke baad mein hum milenge aapko to be mangal. Na bajne ke us par. Bad joke. Good morning.

0: your passport to the world every Monday morning, from global headlines to a pinch of Bollywood spice. The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: ऑलराइट, वेलकम। हमारे तीसरे घंटे में आपका स्वागत है। रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है सुबह 7 बजे से हमारा और आपका ये वाला शो, जहां पर खबरें होती हैं इम्पोर्टेंट वाली दुनिया भर से, मैं लेकर आती हूं आपके लिए। जी हाँ, इट्स द मॉर्निंग शो विद रेणुका, मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर, द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24। सिंगापुर की एक खबर हो जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि लोकल अथॉरिटीज ने डेवलप किया और डिप्लॉय किया है इन हाउस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स टू बेटर सिक्योर सम 2000 गवर्नमेंट सिस्टम्स अंडर एक्सपेंडेड साइबर सिक्योरिटी एफर्ट्स। ये जो प्रोएक्टिव पोस्चर है, इट इज शिफ्टिंग फ्रॉम पेरिमीटर डिफेंस टू एक्टिव थ्रेट हंटिंग, एंड इट कम्स इन द वेक ऑफ एन अटैक ऑन द कंट्रीज 4 मेजर टेलकोस बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर एस्पियोनाज ग्रुप UNC 3886। ये जो अटैक है, इसको पहली बार पब्लिक में बताया गया था जुलाई 2025 में। इट कुड हैव डिसरप्टेड टेलीकॉम एंड इंटरनेट सर्विसेज हैड द अटैकर्स पेनिट्रेटेड फर्दर एंड थ्रेटन्ड नेशनल सिक्योरिटी। पहला इंटरव्यू हमारे सीईओ ऑफ द साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ सिंगापुर, जी हाँ, जो कि जुलाई में लिया गया, ग्वेंडा फोंग, उन्होंने बताया कि वन ऑफ द की लर्निंग पॉइंट्स फ्रॉम द इंसिडेंट इज दैट डिफेंसेस नीड टू गो बियॉन्ड कीपिंग अटैकर्स आउट, क्योंकि एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट एक्टर्स जो APTs होते हैं, लाइक UNC 3886, वो स्पेसिफिक टारगेट्स के पीछे पड़ते हैं। APTs आर ड्रिवन बाय स्टेट बैक्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड यू आर देयर टारगेट, ऐसा कहा फोंग ने, रेफरिंग टू क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। शी एडेड दैट फोकसिंग ऑन थ्रेट प्रिवेंशन विल नॉट बी इनफ, इंस्टेड हमें अब अज्यूम करना चाहिए कि अटैकर्स आर ऑलरेडी इनसाइड एन ऑपरेटर्स नेटवर्क एंड फोकस ऑन हंटिंग देम डाउन बिफोर दे रीक फर्दर हैवॉक। उन्होंने कहा कि भाई सबसे बढ़िया बात यह है कि हमें अज्यूम करना चाहिए दैट द मोस्ट वेल रिसोर्स्ड एंड क्वालिफाइड अटैकर्स वो ढूंढ ही लेंगे रास्ता एट सम पॉइंट, और इस अजम्पशन के बाद वी हैव टू वर्क कि भाई नेटवर्क के अंदर जब वो ढूंढते हैं सेंसिटिव सिस्टम्स एंड डेटा, गिविंग डिफेंडर्स अपॉर्चुनिटीज टू डिटेक्ट देम थ्रू अनयूजुअल एक्टिविटीज। सो आपको अपना इंटरनल ट्रैफिक जो है उसको रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ता है, डिटेक्ट कीजिए एनोमलस ट्रैफिक बिहेवियर, इसीलिए थ्रेट हंटिंग इज अ कंटिन्यूस जॉब। ये बहुत ही बढ़िया बात बोली है, लेकिन मुझे ये सोच के अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर इज टोटली फोकस्ड ऑन कैचिंग सच कल्प्रिट्स, बिकॉज ऑब्वियसली वी कैन नॉट इम्पैक्ट नेशनल डिफेंस, cannot allow anyone to do that. Good morning, cyber threats. जी हाँ, बहुत ही एक बड़ा टॉपिक आज की जिंदगी में, and Singapore's on top of it right now. Good morning.

0: वेलकम बैक रेडियो मसी 24/7 पर. व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक दैट इज. सीरियसली नजर लग जाएगी. आय हाय आपको नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी, मुझे भी मत लगने देना. सुबह का असली वेक अप कॉल, द मॉर्निंग शो विद रेडियो मस्ती 24/7. जी बिल्कुल, रेणुका के साथ में रेडियो मस्ती 24/7 पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क. आपका स्वागत है. न्यूयॉर्क से एक खबर आई है कि वेल्दी नेशंस जो हैं उनको अपना फेयर शेयर करना चाहिए टू हेल्प कंट्रीज दैट आर लीस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट क्राइसिस. जी हाँ, तो वेल ये बात कर रहे थे नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर. और हिमालयन नेशन जो है हमारा नेपाल, वी नो दैट इट सफर्ड वन ऑफ द मोस्ट कैटास्ट्रोफीज इन इट्स हिस्ट्री लेट ऑगस्ट में, जब एक सुनामी लाइक फ्लड जो है ट्रिगर किया गया था बाय अ हाई ऑल्टीट्यूड ग्लेशियल माउंटेन कोलैप्स अलोंग द नेपाल चाइना बॉर्डर. उसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुई उससे हम में से कोई भी अनफेमिलियर नहीं है. मोर देन 1400 पीपल हैव डाइड एंड 6000 आर स्टिल मिसिंग एंड द इकोनॉमिक devastation runs in billions of dollars. Well, जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं शिशिर खनाल नेपाल के, वो बात कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि we are trying to convey to the world is that ये जो इश्यूज हैं क्लाइमेट चेंज के, दे आर नॉट थियोरेटिकल एनी मोर. और हम जानते हैं कि ये रियल इश्यूज हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सच डिजास्टर्स आर लाइकली टू हैपन और भी ज्यादा अगले कुछ सालों में एज द टेम्परेचर्स राइज एंड द ग्लेशियर्स मेल्ट. वेल, साइंटिस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन, उन्होंने डिस्क्राइब किया द इवेंट एज अ कंपाउंड क्राइसिस, जिसके बीच में लोकल जियोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी जो है इट इज कंबाइंड विद लॉन्ग टर्म वार्मिंग दैट हैज लेड टू द ग्लेशियर रिट्रीट एंड परमा फ्रॉस्ट थ्रॉट. अब नेपाल जो है उसने कंट्रीब्यूट किया है नेग्लिजिबली टू द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम, ऐसा कहा मिनिस्टर ने. उन्होंने ये भी कहा कि मोर देन 90% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम हाइड्रो पावर, ओवर 70% ऑफ न्यू कार्स सोल्ड आर इलेक्ट्रिक एंड द नेशन कंट्रीब्यूट्स जस्ट 0.1% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस. सो व्हाई शुड वी हु हैव नॉट हैड एनी कंट्रीब्यूशन टू दिस इश्यू ओनली बेयर द बर्डन. उनका कहना है कि रिच कंट्रीज जो कि सिर्फ और सिर्फ डिजास्टर स्ट्राइक्स के टाइम ही हेल्प ना करें, लेकिन प्रोवाइड करें गरीब देशों को विद फाइनेंसिंग सो दैट दे कैन बिल्ड रेजिलिएंट कम्युनिटीज. वेल, इस समय जो ये मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा अपनी मीटिंग्स न्यूयॉर्क में काफी प्रोडक्टिव रही एंड द यूनाइटेड स्टेट्स अनाउंस्ड $31 मिलियन इन न्यू फ्लड रिकवरी सपोर्ट. देखने की बात है कि आगे जाकर क्या कंट्रीज वाकई एक्शन लेती हैं या ये बात भी भुलाई जाएगी टिल द नेक्स्ट डिजास्टर. ब्यूटीफुल ट्रैक कमिंग अप नेक्स्ट रेडियो मसी 24/7. आई विल सी यू राइट अक्रॉस दैट. गुड मॉर्निंग एवरीवन.
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.
1: ऑलराइट, अजीब अजीब बातें होती हैं हमारे ये फिल्म इंडस्ट्री में, तो बहुत ही अजीब अजीब बातें सुनने में आती हैं और इस डेफिनेटली इस मीडिया वर्ल्ड की कहानियां ही अलग होती हैं। अब कभी मेरे साथ बैठो, मैं भी बहुत सारी सुना सकती हूँ। खैर, दुनिया है और दुनिया में जितने भी लोग हैं सब अलग तरीके के होते हैं, सामने कुछ पीछे कुछ, बहुत सारे जो सामने अच्छे होते हैं, खैर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी जो मिल जाते हैं ना लोग अजीब अजीब से, तो लगता है यार ये एक्सपीरियंस के लिए बहुत बढ़िया है। बट मिलेंगे हर तरह के रंग। वल तापसी पन्नू ने हाल ही में बात करी अपने अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस की जो कि उनके एक्टिंग करियर के दौरान उन्होंने फेस करी हैं। वल शी सेड कि मैं तो एक फिल्म में रिप्लेस हो चुकी हूँ जब मेरी डेट्स लॉक हो चुकी थी। और आप जानते हैं कि क्यों? क्योंकि जो लीडिंग एक्टर की बीवी है वो नहीं चाहती थी कि मैं उस फिल्म में एक्ट करूँ। सो आप सोच सकते हैं कि मुझे रिप्लेस किया गया हीरो की वजह से नहीं, बट क्योंकि उसकी जो बीवी है वो इमेजिन करती रही इनसिक्योरिटी और क्या क्या, और मुझे निकाल दिया गया। Well, she also said that she considered the worst reason she had ever been given for being replaced was this. अब सोचिए कि आपकी एक्टिंग अच्छी है, आपकी डेट्स लॉक होगी, आपको टोटली डायरेक्टर ने कर लिया सिलेक्ट, प्रोड्यूसर आपको पसंद करता है, लेकिन Then she says she was not always aware when a scene was being shot in a manner that it could appear more sexualized in the final edit. जब आप आउटपुट देखते हैं ना तब आपको लगता है अरे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, बिकॉज मुझे लगा बड़ा एस्थेटिक होगा, लेकिन कई बार ये भी लगता है कि कितना अननेसेसरी है। एंड शी ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट ग्लैमर डज नॉट नेसेसरीली हैव टू बी लिंक्ड विद सेक्शुअलाइजेशन। आप ग्लैमरस फिल्म में हो सकते हैं विदाउट बींग हाइपर सेक्शुअलाइज्ड। वेल, इस समय आप देख सकते हैं तापसी पन्नू को गंधारी फिल्म में। जी हाँ, अगर आपने देखी नहीं है तो नेटफ्लिक्स की एक्शन थ्रिलर है, देवशीष मखीजा की डायरेक्शन है एंड द फिल्म प्रीमियर्ड ऑन नेटफ्लिक्स ऑन सितंबर 3rd। मैंने देखी है, एक्चुअली इट इज क्वाइट डिसेंट फिल्म, सो आप जरूर देख सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, मेरे प्यार में ही देख लीजिए, देख लीजिए जाके। गुड मॉर्निंग एवरीवन।

ऑलराइट, एक अलग सी खबर जी हां, सिंगापुर की एचडीबी रिव्यू कर रहा है स्कीम दैट अलाउज 3 room और स्मॉलर फ्लैट्स टू बी कंबाइंड इनटू अ जंबो यूनिट। आफ्टर अ फ्लैट ऑफ दिस टाइप इन थेलोक ब्लांगा वाज पुट अप फॉर सेल एट $2.18 million। सुबह का असली बात कर रही हूँ मैं सिंगापुर के एचडीबी की, और एचडीबी ने ये कहा है कि वो अंडरस्टैंड करते हैं कंसर्न्स फ्रॉम द पब्लिक अबाउट द फ्लैट लिस्टिंग एंड दैट द अथॉरिटीज आर कमिटेड टू कीपिंग पब्लिक हाउसिंग अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनको अभी तक रीसेल एप्लीकेशन नहीं मिला है फॉर द फ्लैट। द एप्लीकेशन विल हैव टू बी सबमिटेड बाय द सेलर एंड बायर हु विल देन अवेट एचडीबीज अप्रूवल फॉर द ट्रांजैक्शन। एचडीबी ने साथ में ये कहा दैट द लिस्टेड प्राइस ऑफ 2.18 मिलियन फॉर द फ्लैट इन 93B तेलोक ब्लांगा स्ट्रीट 31 कंप्राइजिंग ऑफ 3 room फ्लैट्स इज रियली हाई देन द प्राइसेस फॉर कंपेरेबल ट्रांजैक्शंस इन द एरिया। 3 kamron का जो फ्लैट है इन द एरिया हैव रेंज फ्रॉम अबाउट 673,000 टू 771,000 ओवर द पास्ट 6 months एंड टेकिंग द अपर एंड ऑफ द रेंज द टोटल प्राइस ऑफ 2 3-room फ्लैट्स वुड बी अबाउट 1.54। लेकिन 2.18 कहां से आ गया? तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो करंट लिस्टेड प्राइस है ये $600,000 से भी ज्यादा है या 40% से ज्यादा है। अबव दिस अमाउंट शुड अ ट्रांजैक्शन प्रोसीड देन द विलिंग बायर विलिंग सेलर बेसिस पर इट विल लाइकली एंटेल अ सब्सटेंशियल कैश ओवर वैल्यूएशन व्हिच मस्ट बी पेड फुली कैश अप फ्रंट। Cash over valuation is the amount a buyer has to pay in cash when a resale flat is sold above its HDB valuation. तो बिल्कुल जो rules हैं वो cover करते हैं। अब देखने की बात ये है कि वाकई इनको application मिलती है या नहीं। Conversion scheme जो है इसको introduce किया गया था 1993 में और allow करता है eligible owners को who require more living space to combine their flat with an adjacent unit to form a larger flat. Well, let's wait and watch guys. Of course, this will be quite a deal if it does happen, right? हाय हाय, 2 rooms, 2 apartments को कंबाइन करके क्या कर दिया, किया किया क्या किया प्राइस बढ़ा दिया। गुड मॉर्निंग।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

भाई मजा आ गया, बिल्कुल बेशरम रंगों की बात नहीं है इस समय, तो हर तरह के रंगों की बात हो रही है रेडियो मस्ती 24/7 पर। जी हाँ, क्या क्या कमाल का मौसम हो रहा है यार। सीरियस हेडलाइंस विद अ नॉट सीरियस हेडलाइंस की बातें अब हो गई खत्म, अब तो शो खत्म होने की बात आ रही है। सो वेल लेट मी टेल यू गाइस, दिस वीकेंड वाज सो सो सो बिजी बट सो सैटिस्फाइंग। आपने क्या किया जरूर बताएगा मुझे। वेल आई वेंट फॉर इश्क सूफियाना, एट द सेम टाइम द बैक स्टेज सिबलिंग्स का जो भजन जैमिंग का इवनिंग था वहाँ पर भी हमारे में से कुछ लोग पहुँचे, एंड ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम बहुत सारे इवेंट्स हो रहे थे सिंगापुर में। मतलब संडे के दिन, कल के दिन में आई वॉज एट द माउंट बैटन सीसी, मैं वहाँ पर, हमारी बहुत ही खास सपना जी, रमेश जी भी वहाँ पर थे, उनका स्टॉल था और अमेजिंग स्टॉल, उनके मुरुकूज अच्छे से बिक रहे थे विच आई वॉज सो हैप्पी अबाउट, एंड साथ में जो मैंने टेस्ट किया है उनकी चीज़ें, ओए होए मज़ा आ गया बिल्कुल। आपने अगर ऑर्डर करना है ना कोई कमाल की चीज़ें फॉर दिवाली, बर्फीज़ हैं अलग अलग तरह की या मुरुकूज़ हैं, मतलब मैं भी यहाँ पर क्या बेचने लग गई बिकॉज मैंने खाया, मुझे याद आ गया। सो सपना जी से ज़रूर लीजिएगा। लेकिन एट द सेम टाइम गाइज, आई हैव टू टेल यू दैट I was volunteering at a community center event as a part of IAEC. जी हाँ, पहली बार तो सब अपने वो जो हमारी यूनिफॉर्म वाली टी शर्ट्स हैं वो पहन के, एंड आई वॉज होस्टिंग एंड आई वॉज टॉकिंग टू ऑल द स्टॉल ओनर्स। आई रियलाइज देर इज सो मच टैलेंट विद ऑल दीज हाउसेज, जहाँ पे घरों में ऐसी ऐसी चीज़ें बन रही हैं कि मतलब खाने पीने की सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ अमेजिंग हाउ क्रिएटिव पीपल आर, कि देख के हैरानी हो जाती है कि ऐसे आइडियाज़ भी आते हैं। मतलब किसी का अगर कोई चोट लग गई है, उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ना पड़ा है, तो उन्होंने घर पर बैठ के कुछ और बनाया उस टाइम पर, ये नहीं कि टाइम वेस्ट करके, यू नो पीपल आर डूइंग दैट। आई लव्ड इट, आई लव्ड एवरी बिट ऑफ व्हाट आई सॉ यस्टरडे। सो कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हु वाज देयर एंड really a part of the stalls, a part of Mountbatten CC festive fair. अगली बार होगा तो आप लोग जरूर आइएगा खुद experience करने के लिए। And पता है सबसे बड़ी बात होती है, these are so inspiring for the future generation, right? तो बच्चों को ये चीजें दिखानी बहुत जरूरी है। But on that very emotional note, जा रही है रेणुका यहाँ से, and I will see you tomorrow evening. All right, till then, take good care. फिलहाल के लिए happy Monday and काम पे लग जाओ। Good morning.

0: नाम सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: मेरे करण अर्जुन आएंगे
1: ना, करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
3: हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
4: Some shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
5: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक

0: Crafty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space, dear मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से। एज द सन राइजेस, सो डज होप। Begin your day with devotion, harmony and positivity with the devotional hour on Radio Masti 24/7. Masti pe bhakti subah 6 baje se.
2: Mere Karan Arjun aayenge.
3: Na Karan Arjun aayenge na hi RJs aayenge. Par ha to sirf super hit back to back gaane aayenge. Masti Music Cafe.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: सितंबर तुसी जा रहे हो, एक मिनट सुनो ना, वो रेजोल्यूशन जो दिए थे उनका क्या करना है बता के जाओ। हाय सिंगापुर, मंथ के आखिरी के कुछ दिन जो है वो चल रहे हैं, मतलब इस महीने के आखिरी के कुछ दिन चल रहे हैं। मंडे है आज, नया हफ्ता हमारे सामने आ चुका है, हम हफ्ते में एंटर हो चुके हैं और मुझे लगता है कि कैलेंडर ना हम सबको थोड़ा ऐसे साइड आई दे रहा है। देखो क्या मंथ के स्टार्ट में हम क्या क्या डिसाइड करते हैं, मतलब क्या ही नहीं कर लेते। इस बार सेविंग बेटर होंगी, रूटीन सेट कर लेंगे, पेंडिंग काम निपटाएंगे, थोड़ा डिसिप्लिन लाइफ रहेगी। फिर मंथ एंड पे क्या रियलिटी होती है, सेविंग्स को तो छोड़ दो, वो डिलीवरी आप ना हमें इमोशनली इतना हमसे अटैच हो चुकी होती कि मैं क्या बताऊं, वो हंगर स्ट्राइक पे चली जाते हैं अगर हम वहां से कुछ ऑर्डर नहीं करते हैं। तो डिलीवरी वाले खुद आके बोलते हैं, बहन जी खा पी रहे हो ना, आजकल कुछ मंगा नहीं रहे हो, बताओ। लेकिन मुझे ना पर्सनली मंथ एंड बहुत पसंद है, क्योंकि ये थोड़ा तो एक फनी रिमाइंडर है कि हर चीज परफेक्ट नहीं होती है यार। क्यों परफेक्टली करना चाहते हो हर बात को, नहीं होता, जरूरी नहीं है। कुछ चीजें ना कंप्लीट होती हैं, कुछ हाफ डन रहती हैं तो अच्छी लगती है, और कुछ को हम रिस्पेक्टफुली अगले महीने फॉरवर्ड कर देते हैं। दिस इज लाइफ, यही जिंदगी है, ऐसे ही जीना है, समझे? एंड दैट्स परफेक्टली ओके, दैट्स व्हाट आई फील। तो मंडे को ना प्रेशर से बिल्कुल स्टार्ट नहीं करेंगे, किक स्टार्ट मार के स्टार्ट करेंगे, थोड़ा रीसेट, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा

मैं हूँ मुग्धा, आप सुन रहे हैं मासी हैंगआउट। जिन लोगों ने अभी भी ट्यून इन किया, हमने मंडे को कैसे स्टार्ट किया आपने मिस कर दिया, पर कोई नहीं, हमने मंडे को किक मारी है, देखते देख कहाँ जाके गिरता है, किसकी गोद में गिरता है। Stay connected. जोश में रहो। This is something.

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
2: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square kiosk number 12, 11th to 25th September.
3: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो, या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
2: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
4: जीजी
2: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
4: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय सिंगापुर, वेलकम बैक। अगर आपने अभी अभी ज्वाइन किया, यू हैव डन इट एट द राइट मोमेंट, एकदम सही वक्त पे आए हैं। क्योंकि अगर ये मिस कर देते ना, लाइफ का फन मिस कर देते, पूछे कैसे। बता दी, अच्छा एक बात बताइए मुझे, डांडिया नाइट में ना दो टाइप के लोग होते हैं कि नहीं? मुझे तो हमेशा मिलते हैं, एक जो एक्चुअली सारे स्टेप्स जानते हैं, बाय गॉड क्या उछल कूद मचा देते पूरे पंडाल में, एंड दूसरे जो बस स्टिक्स लेकर के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी और की भी कोरियोग्राफी जो है डिस्टर्ब करते हैं, पर एंटरटेन प्रॉपरली कर लेते हैं और हो भी जाते हैं। मैं पर्सनली ना सेकंड कैटेगरी को ज्यादा एंटरटेनिंग मानती हूँ, क्योंकि मैं उसी कैटेगरी में आती हूँ। वैसे अगर आप भी म्यूजिक, डांस, फुल फेस्टिव मूड के लिए बिल्कुल तैयार है, दिस इज द प्लेस। वी इंडस पीटी लिमिटेड प्रेजेंट्स बॉलीवुड डांडिया नाइट ऑन सैटरडे 10th October 6 बजे से शुरू हो जाएगा। ये माहौल कब तक चलेगा इसकी तो मैं भी कोई गारंटी नहीं ले सकती, बट वेयर इज दिस हैपनिंग, ये हो रहा है खालसा एसोसिएशन बिल्डिंग सिंगापुर, ऑफ कोर्स सिंगापुर में हो रहा है। टिकट्स हैं $30 फॉर अडल्ट, 15 बच्चों के लिए 7 से 12 साल के, एंड 6 साल के से लेकर के छोटे बच्चे जो है वो तो फ्री में एंट्री ले सकते हैं। मैं तो अभी जस्ट स्वीट 5 की हुई हूँ। एंड हाँ, टिकट्स आर वेरी लिमिटेड, तो ये सारे टिकट्स जो है वो टिकट मास्टर पे अवेलेबल है, एंड ग्रुप डिस्काउंट भी है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9022-1210 पर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको कहीं जाना नहीं पड़े, लाइन लगानी नहीं पड़े, जद्दोजहद करनी नहीं पड़े, तो आपके पास एक तरीका है। मैं आपको एक गाना सुनाऊंगी, गाना या धुन जो भी मैं आपको सुनाऊंगी, उसको पहचान के आपको मुझे सही जवाब देना है। सो द धुन इज

तीन ऑप्शंस हैं आपके पास, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन ए बेबी शार्क गरबा मिक्स, ऑप्शन बी केसरियो रंग तने एंड ऑप्शन सी कजरा मोहब्बत वाला डांडिया रिमिक्स। तीन ऑप्शंस हैं आपके पास, सही जवाब भेजिए 9151893 पर और आप जीत सकते हैं बॉलीवुड डांडिया नाइट के टिकट। और हाँ, सही गाना पहचानने के साथ एक और बात का प्रेशर है। देखो भाई, कुछ भी करो पर गलत स्टिक्स कहीं मत चला देना इधर उधर। उड़ता तीर कहाँ से आए कोई नहीं जानता, डांडिया करते समय यू नो।

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: सिंगापुर में ना हम सबको एक चीज काफी फेमिलियर लगती है, हीट और ह्यूमिडिटी। वो हमारे बचपन के साथ ही है। बाहर बैठो तो ऐसा लगता है कि हवा भी फुल स्लीव्स पहन करके बैठी है, हद होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, ये ना सिर्फ हमारी डेली कंफर्ट का इश्यू नहीं है, सिंगापुर के डेटा सेंटर्स जो हैं, डाटा सेंटर्स, उनके लिए भी ये क्लाइमेट जो है प्रॉपर इंजीनियरिंग चैलेंज हो चुका है। रीसेंट रिसर्च के हिसाब से सिंगापुर में साल के 85% से ज्यादा वक्त ना टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ऐसी कंडीशंस में रहती है जहां पे ट्रेडिशनल एयर बेस्ड कूलिंग को एफिशिएंटली इस्तेमाल करना इज वेरी हार्ड। और ऊपर से एआई सर्वर्स और ज्यादा हीट जनरेट करते हैं, आपको तो पता ही है जितने ज्यादा एसी उतनी ज्यादा गर्मी। तो सिंगापुर ने इंट्रोड्यूस किया एक बहुत ही अमेजिंग डेटा सेंटर, ट्रॉपिकल डेटा सेंटर्स के लिए दुनिया का पहला नेशनल स्टैंडर्ड फोकस्ड ऑन लिक्विड कूलिंग डेटा सेंटर है। इसमें कूलेंट को हार्डवेयर के मच क्लोजर यूज करके हीट को एफिशिएंटली रिमूव किया जाता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या कहना चाहते, पर इतना समझ में आ गया कि दिस इज बेटर हमारे एनवायरमेंट के लिए और उनके लिए भी। सो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, सही सेटअप में लिक्विड कूलिंग एनर्जी कंजम्पशन को 30% से ज्यादा रिड्यूस कर सकती है कंपेयर्ड विद द कन्वेंशनल एयर कूलिंग। मुझे स्टोरी का एक फन पार्ट समझ में आता है। हम लोग एसी के सामने बैठ के कहते हैं यार बहुत गर्मी है, उधर सर्वर कह रहा होता है सेम, तो जो बाहर जो कंप्रेसर लगा होता है वो भी कहता है सेम बहुत गर्मी है, और कंप्रेसर के बाहर जो कड़ा होता है वो भी कह रहा होता है बहुत गर्मी है। सो बेसिकली गर्मी का कारण ही एसी है। कब समझेंगे पता नहीं।

जो भी देख यही पूछ है किसकी जगाती है कयामत कोई।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय एवरीबॉडी, दिस इज मी मुग्धा एंड वेलकम बैक। कभी कभी किसी डिजास्टर की खबर ना हम स्क्रीन पर देखते हैं और दो मिनट के बाद लाइफ जस्ट नॉर्मल हो जाती है ना, ऐसे आम जिंदगी चलने लगती है। लेकिन जिनके घर, जिनके अपने, उनकी पूरी लाइफ उस डिजास्टर से बदल चुकी होती है, उनके लिए न्यूज साइकिल ना कभी खत्म नहीं होती है, वो चलती रहती है, चलती रहती है। नेपाल के फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स के बाद सिंगापुर के 35 मेंबर ऑपरेशन जो है, एक टीम है जो वहां पे गई थी, एंड सिंगापुर पुलिस फोर्स, हेल्थ साइंस अथॉरिटी और एक और ग्रुप है HTX, उन्होंने, उनके ऑफिसर्स ने विक्टिम आइडेंटिफिकेशन, पोस्टमार्टम का काम, फिंगरप्रिंट्स और एरियल सर्वेलेंस जो होता है वो, ट्रेनिंग तक में पूरा सपोर्ट दिया। टीम 1 से लेकर 18 सितंबर तक नेपाल में ही थी, एंड एक ऑफिसर ने बहुत सिंपल सी बात कही कि उनका काम सिर्फ टेक्निकल प्रोसीजर्स नहीं था, एक फैमिली को एक फाइनल जवाब देना था, बिकॉज एवरीबॉडी एक्चुअली डिजर्व्स अ क्लोजर। और यहीं पे बात हम सब की आती है, हमारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। डिजास्टर जोन में जाके हेल्प नहीं कर सकते हम, अग्रीड, लेकिन हम यहाँ से हेल्प कर सकते हैं जहाँ पे हम हैं। कैसे? नेपाल फ्लड रिलीफ फंड का डोनेशन बूथ है लिटिल इंडिया आर्केड के एंट्रेंस 48 सरांगून रोड पर। 3 अक्टूबर तक डेली सुबह 10 से लेकर रात के 8 बजे तक ही ओपन है। इनिशिएटिव इज ऑर्गेनाइज्ड बाय हिंदू वॉलंटियर्स नेटवर्क और सिंगापुर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आप यहाँ जाइए एंड आपका छोटे से छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो वहां पे जो लोग सर्वाइवल तक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अपनों को ढूंढ रहे हैं, मदद ढूंढ रहे हैं, आपका ये छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन और एफर्ट वहां तक जाके कॉन्ट्रीब्यूट करने का उनकी लाइफ बदल सकता है। वो ऑलरेडी बहुत परेशान है और आप अगर कुछ करेंगे तो वो उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा।

जरूरी नहीं है कि जंग के मैदान में जाके जंग लड़ी जाए, कुछ जो लड़ाइयां हैं वो जंग के मैदान के पीछे रहकर भी लड़ी जाती हैं। एंड आप बनिए बिहाइंड द सीन हीरो जी, कंट्रीब्यूशन दीजिए और हीरो बनिए।

0: दस का बीस।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय सिंगापुर, वेलकम बैक। मैं हूँ मुग्धा आपके साथ और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर एंड दिस इज द सेकंड आवर ऑफ द शो। बॉलीवुड आर का मोड थोड़ा इंटेंस करते हैं जी। वैसे तो ये आर एंटरटेनमेंट का है और इंटेंसिटी और एंटरटेनमेंट आजकल एक ही पैकेज में आते हैं। व्हाई? बिकॉज विकी कौशल का लव इन वॉर का फर्स्ट लुक आ चुका है एंड बंदा ये बिंदास है भाई साहब। ये बंदा ऐसा लग रहा है जैसे हेलो बोलने से पहले किसी के हिसाब किताब सेटल करने निकला भाई साहब। ही एट एंड नो क्रम्बल लिव्स ए लिफ्ट, ऐसे ही कुछ कहते हैं ना आजकल, खा गया ये आंखों आंखों से। फिलहाल तो भंसाली जी के तीनों कैरेक्टर्स के लुक आ चुके हैं। सच बताऊं, ही इज अ कैमेलियन। मैं हमेशा कहती हूँ विकी कौशल इज अ गिरगिट। आप बोलो क्या बनना है वो बन जाएगा। एंड जस्ट लुक एट हिम, लुक एट हिम। He is never in his comfort zone. He is always out of his comfort zone. Anyway, Bhansali saab ki love and war jo hai, Ranbir Ali and Vicky Kaushal star. Pehli baar ek saath ye teenon aa rahe hain. And Vicky ka look is very sharp and very edgy, brooding military style intensity. Aur film ka ek bahut hi romantic war drama angle aisa bataya ja raha hai. Aur abhi tak jo visuals aaye hain, unse lag raha hai ki war part bilkul bhi halka nahi hai. Ranbir ke khoon se lathpath haath aur inka ye jo नजर हटा नहीं पाओगे, हटेगी नहीं वाला लुक है। Oh my God, मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है। एंड बट इंटरेस्टिंग बात क्या है, फिल्म का शूट ऑफिशियली रैप अप हो चुका है, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है एंड रिलीज डेट इज लॉक्ड 27 जनवरी। मुझे विकी कौशल का फर्स्ट लुक देख कर ना बस एक थॉट आया, भंसाली साहब की फिल्म में यूजुअली कॉस्ट्यूम सेट्स इमोशंस बहुत ग्रैंड होते हैं, यहाँ तो एक्सप्रेशन भी आईमैक्स साइज का है।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: मेरी तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। अब आप कहेंगे दिवाली अभी तो बहुत बाकी है, नहीं बाकी है बिकॉज जब दिवाली आती है तो वो 2 महीना पहले ही शुरू हो जाती है। तैयारियां, शॉपिंग, देखो सिंगापुर दीपावली शॉपिंग का ना सीन एब्सोल्युटली अलग होता है। घर से निकलते वक्त जो है हम बोलते हैं बस 2-4 चीजें लेंगे एंड ऑल दैट डन। वापस आते आते बैग्स देख के लगता है पूरा का पूरा शॉप ही खरीद करके ले आए हैं। फेस्टिव सीजन पर्सनली ना हमने खुद ने स्पॉन्सर किया, ऐसा लगता है कि हमें सब फ्री में मिल रहा है। एंड इस बार शॉपिंग का स्केल थोड़ा और बड़ा होने वाला है। सी नाउ देयर आर फेस्टिवल्स, यू हैव करवा चौथ, यू हैव दशहरा, यू हैव दिवाली एंड व्हाट नॉट। बाय गॉड सीरियसली, जैक सलाम इंडिया द फैमिली एक्सपो आ रहा है 16 से 25 अक्टूबर तक, हॉल 9 फ्लाई ओवर 3 सिंगापुर एक्सपो। और आपको पता है दिस इज बिगर देन एवर बिफोर। जी हाँ, ये इसकी 20th एनिवर्सरी है एंड 10 डेज दीपावली डिस्काउंट सेल है। आप समझ रहे हैं? सो बेसिकली यू विल हैव टू स्टेप इनटू द शॉपिंग स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जयपुर, कोलकाता, हैदराबाद, कश्मीर, पंजाब एंड पूरा का पूरा इंडिया है वहां पे। यू हैव अमेजिंग गिफ्ट्स टू विन, आपके पास मौका है। साथ में आप काफी सारे क्रूज वूज के भी टिकट जीत सकते हैं। आप समझ रहे हैं? डेली प्राइजेस जीतने का मौका है आपके पास। यहाँ डांडिया है, यहाँ पे रंगोली कॉम्पिटिशन है, कैरम कॉम्पिटिशन, चेस कॉम्पिटिशन एंड मतलब कुकिंग कॉम्पिटिशन। ऐसी जगह है जहाँ पे स्टेप इन करने के बाद आपको लगेगा ओ माई गॉड, ये तो हम बिल्कुल सही जगह आए हैं। और मुग्धा ने बिल्कुल सही बात कही थी कि यहाँ आएंगे तो जाने का दिल नहीं करेगा। यस, द इंटरेस्टिंग पार्ट इज विजिटर्स के लिए फ्री एयर टिकट जीतने का चांस है। डेस्टिनेशंस इंक्लूडिंग दुबई, लंदन, पेरिस, रोम एंड न्यूयॉर्क। उफ, तो अगर दीपावली शॉपिंग को सिर्फ शॉपिंग नहीं रखना है, प्रॉपर फैमिली आउटिंग बनाना है, दिस इज द प्लेस, यू नीड टू बी हियर। फिर बता रही हूँ, 16 से 25 अक्टूबर सिंगापुर एक्सपो, हॉल नंबर 9 फ्लाईओवर 3, जैक सलाम इंडिया एक्सपो, फैमिली एक्सपो जो है ये इस बार पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है और बेहतर है। यस, शॉपिंग लिस्ट छोटी मत बनाना, समझ रहे हो ना?

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय, वेलकम बैक। आजकल ये ट्रेंड हो गया ना, लोग अपनी फिल्मों को वापस से री रिलीज कर रहे हैं। बहुत सी फिल्म्स जो हैं वो री रिलीज होती हैं। हम जाते हैं, नॉस्टैल्जिया फील करते हैं, फेवरेट सीन्स को फिर से देखते हैं, इमोशनल होते हैं, रोते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, एंड देन वी कम बैक। लेकिन अवेंजर्स असेंबल हुए हैं एक बार फिर से। ऐवें नहीं, अवेंजर्स एंडगेम एनकोर वैसी वाली री रिलीज नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता देती हूँ, दिस इज नॉट अ नॉर्मल री रिलीज। ये मैं थोड़ा ना एक्स्ट्रा इमोशन के साथ इसलिए बोल रही हूँ, बिकॉज एंडगेम मेरे लिए जेन्युइनली बहुत स्पेशल है। आई हैव रीवॉच्ड इट, आई डोंट इवन रिमेंबर हाउ मेनी टाइम्स, एंड दिस टाइम इट्स ओह माय गॉड। मैं क्या ही बोलूँ, मुझे तो गूज़बम्स आ रहे हैं एंडगेम का नाम लेते जैसे वो बोलता था कैप्टन अमेरिका अवेंजर्स। ओफ, मुझे तो बस थानोस का सर कूटने का मन करता है। एनीवे, 2019 वाली जो फिल्म है ना, वो दोबारा स्क्रीन पर नहीं आई है, एवें नहीं आई है। इस बार एक्स्ट्रा फुटेज ऐड की गई है जो कि फिल्म के एंड में है, एंड वो सीधा अवेंजर्स डूम्सडे की तरफ एक ब्रिज बनाती है, इसीलिए इसको रिलीज किया गया है। शो शुरू होने से पहले ना, रॉबर्ट डाउनी जो है और क्रिस इवेंस का एक बहुत ही स्पेशल ग्रीटिंग है, और फिर वो फेमिलियर मोमेंट्स हैं जहाँ पे थिएटर में एक बार फिर अवेंजर्स असेंबल ऐसे सुनते हैं, आपको गूज़बम्स आएंगे और फिर थानोस मरेगा, चुटकी बजेगी, हमारा प्यारा आयरन मैन मर जाएगा। दिस इज द ओनली थिंग, अगर मैं बदल सकती तो बदल देती। एनीवेज, मुग्धा भावनाओं में बदभाव काम की बात बताते हैं। द रियल सरप्राइज, मार्वल ने ओरिजिनल एंडिंग को ट्वीक कर दिया है। स्टीव रॉजर्स, बता दूं, स्पॉइलर अलर्ट प्लीज, अब तक सबको पता लग गया होगा। स्टीव रॉजर्स और पेगी कार्टर का एक सीन था ना आइकॉनिक, जहां पे वो मिलने जाता है एक अलग टाइमलाइन में, दैट इज एक नए विजिटर के साथ इंटररप्ट हो रहा है, एंड द विजिटर इज हमारा प्यारा, जो सब्जी में किसी को नहीं भाता लेकिन कैरेक्टर में ही इज अ जेम, लोकी। लोकी लोकी एक जैसे ना। एंड क्रेडिट्स के अराउंड नए सीक्वेंसेस है, हल्क, डॉक्टर डूम, TVA, collapsing multiverse, directly सब कुछ set up करते हैं, and then comes Doctor Doom. मैं बच्चा बन जाती हूँ whenever I talk about Avengers, seriously. This is not just come watch Endgame again, ऐसा कुछ नहीं, actually कह रहा है जो ending तुम जानते थे ना, उसका अगला chapter यहाँ से शुरू हो रहा है। मुझे ना यही चीज exciting लगती है, nostalgia भी है, closure disturb नहीं हो रहा, and future का teaser है, डूम्सडे से आप कनेक्ट कर लोगे। मार्वल ने री रिलीज को मेमोरी लेन नहीं, लॉन्च पैड रीलॉन्च बना दिया है। अब आप और नई मेमोरीज लेके आएंगे, और जब डूम्सडे देखने जाएंगे तो डबल मेमोरीज लेके जाएंगे।

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
3: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musty 24/7. Email a brief intro to info@radiomusty.com.sg requesting for application form.
4: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Musty Unplugged. Your indie acoustic playground on Radio Musty 24/7.
5: Ek khwab ne aankhein kholi hain. Kya mood aaya hai kahani mein? Wo bheeg rahi hai barish mein. और आग लगी है पानी में।

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: आई सीरियसली फील कि कई बार ना मुझे शो के बीच में बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है। सच में आपको क्या लगता है, यहाँ पे जो मैं 3 घंटे आपसे बातें करती हूँ, मैं कितनी एनर्जी ड्रिंक्स नहीं पीती हूँ? आई जस्ट कीप मंचिंग एंड मंचिंग एंड मंचिंग। क्या कृषिवाल के नट्स, आपको क्या लगता है ये सुपर एनर्जी पावर कहाँ से आती है मेरे पास? एक चीज आपने नोटिस की है, हेल्दी स्नैकिंग का आइडिया ना सबको अच्छा बहुत लगता है, पर जब पैकेट खोलने के लिए कुछ टेस्टी सामने ना दिखे आपको, तो डिसिप्लिन ना आपका टाइमलाइन के पार चला जाता है, वो किसी और मल्टीवर्स में खो जाता है। इसीलिए मुझे प्रैक्टिकल ऑप्शन ज्यादा पसंद है, ज्यादा टीम टाइम नहीं पसंद है मुझे, ऐसा जो मेरे बस में हो। तो अगर आप घर के लिए ग्रोसरीज पार्टी सेंट्रल सब तो ले रहे हैं, साथ में आपको एक स्नैकिंग ऑप्शन चाहिए बढ़िया, GGMartOnline.com पे जाओ मित्र, जाओ बंधु, जाओ सखा। कृषिवल के नाथ सी ड्राई फ्रूट अवेलेबल है वहां पे, आमन कैश यू सीड ड्राई फ्रूट, इतने ऑप्शंस हैं कि आपको लगेगा ये क्यों नहीं खाए मैंने अभी तक। मैं तो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आई कीप ऑन मंचिंग एंड मंचिंग एंड मंचिंग। एंड द बेस्ट पार्ट, आपको कहीं भागना नहीं है, डेली यूज आइटम, स्नैक ऑप्शन, प्रीमियम मंचिंग, बस ब्राउजर पे आपको मिलेगा, क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक आपके घर आ जाएगा। तो अगर पैंट्री रिफिल करनी है आपको, स्नैक ड्रॉर को थोड़ा अपग्रेड करना है, तो GGMartOnline.com है ना। मैं हूं मुग्धा, आप सुन रहे मस्ती हैंग आउट रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। और अगर आपको यही एनर्जी थ्रू आउट मी लाइफ में चाहिए, ट्रस्ट मी, इससे अच्छा कुछ नहीं है।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: Hi Singapore, welcome back. Show के third and the last hour में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून इन किया है, मैं क्या ही बताऊं, चलो कोई बात नहीं, दे रहा दुरुस्त है। बचपन में ना किसी चीज की खुशी का जो एक स्केल होता है, दैट इज समथिंग ऑन अ डिफरेंट लेवल। और आज की डेट में अगर हमें कोई बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट दे दे तो हम पहले उसका ब्रांड वैन चेक करते हैं और उसको देखते हैं काम का है नहीं, एंड देन कभी ना कभी वो खुल जाता है, काम आ जाता है। पर बच्चे मतलब उसको गले से लगा लेते हैं। एक वीडियो जो है स्क्रॉल करते करते, दैट रियली मेड मी स्टॉप एंड लुक एट इट। एक छोटी सी टॉडलर बच्ची है, उसको उसके पापा ने ना नए शूज गिफ्ट किए, तो प्रिटी पिंक स्पार्कली पेयर्स। नॉर्मली कुछ कोई रिएक्ट करता तो क्या करता, वो पहन के घूम लेता, जंप कर लेता, संभाल के साइड में रख देता, उसको रोज देखता रहता। नो, मैडम ने शूज को बेड पर अपने पिलो के पास में रखा, एंड सोते वक्त वो बार बार उनको ऐसे छूती रहती है, अरेंज करती रही, देखती रही, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। डैडीज प्रेशियस गर्ल, ऐसी थोड़ी पापा की परियां होती हैं बेटियां। ऑनेस्टली मुझे ये मोमेंट ना शूज से ज्यादा उसके रिएक्शन के लिए ज्यादा क्यूट लगा। फुटवेयर नहीं था उसके लिए, पापा मेरे लिए लाए हैं, दैट वाज इनफ। पापा क्या ही ले आते, वो सब वो ऐसी रखती, चाहे वो शूज ले आए, चाहे वो पेन ले आते। मुझे ऐसा लगता है कि पापा कुछ भी ले आते ना, वो ऐसे ही संभाल के दिल के करीब रखती। आपको याद है बचपन में कोई नई चीज अगर आपको मिली हो और आप उसको अपने सिरहाने रख के रात भर सोए हो, कोई नया टॉय, कोई पेंसिल बॉक्स, वॉच डॉल, कुछ भी। मैंने किया है, बहुत बार किया है, अक्सर नए कपड़ों के साथ तो बहुत बार। टॉयज वॉयज तो वैसे ही बहुत गले लगा के सोते हैं, झूठ नहीं बोलूंगी। पापा कुछ ले आ रहे थे ना, ऐसा लगता था कि ये चीज अब ये हमेशा होनी चाहिए, लाइफ टाइम के लिए है, ये कभी नहीं खराब होगी, कभी नहीं फटेगी, कभी नहीं टूटेगी, कभी गंदी नहीं होगी, ये पापा लेके आए हैं। या कितना अच्छा था, हम एक बबल में रहते थे।

0: थी।
1: खैर, सीखने वाली बात यह है कि बच्चे ना गिफ्ट की प्राइस नहीं नापते हैं, वो जेस्चर फील करते हैं। और कभी कभी हम बड़े हो जाते हैं और एक सिंपल सी बात को कितना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, गिफ्ट है ना। तो अगली बार इमोशनल होके गिफ्ट देना, सोचना, पर दिल और दिमाग दोनों से सोचना।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया अकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
4: डोंट मिस एक्साइटिंग ऑफर्स ऑन हेल्दी स्नैक्स एंड क्रिशिबल प्रीमियम नट्स एट वेलोसिटी नोवीना स्क्वायर कियोस्क नंबर 12, 11th टू 25th सितंबर।
5: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
4: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
6: जीजी।
4: क्रिशिबल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
6: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: क्या करिए मुग्धा भाई, मैं तो ये सोच रही हूँ कि मजेदार मोमेंट आने वाले हैं। समय ही ऐसा है, नवरात्रि का मूड आ रहा है एंड ये मूड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पर है। पहले ना एक सर्कल बनता है, नवरात्रि में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती है, एक गोला बनता है, फिर वो रिदम पकड़ता है, पता ही नहीं लगता कि कौन दोस्त है कौन स्ट्रेंजर और सब एक बीट पे हालो रे हालो। इसी कम्युनिटी फीलिंग को लेकर के ना सिंगापुर गुजराती सोसाइटी प्रेजेंस सिंगापुर ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि इस बार एक नए बिगर एंड अ वेरी प्रीमियम वेन्यू। एंड व्हेन आई से दिस विद सो मच ताकत, समझ जाओ सच में, लगुना बॉलरूम दूसरी थानी लगुना, 11 लगुना गोल्फ ग्रीन सिंगापुर जी। इस बार ये वेन्यू ऐसा है जिसको देख के आप कहेंगे वाह, इस बार तो गोला और बड़ा बनेगा। सी व्हाट हैपेंस, ये जो एक पुराना ट्रेंड है ना जिसको हम बैठा गरबा कहते हैं, ये बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल है गरबा करने का, मुझे जेन्युइनली बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। यहाँ पे सेलिब्रेशन सिर्फ डांडिया रास से शुरू नहीं होता है, इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल रिदम बैठा गरबा, गुजरातीज का जो है एक बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है इस तरह से गरबा करना। एंड उस एक्सपीरियंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये नवरात्रि का बैठा गरबा। पहले सुर ताल सिंगिंग सीटेड रिदमिक मोमेंट्स होते हैं और धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे पूरा फेस्टिव एनर्जी बिल्ड होता है एंड दैट्स व्हाई इस बार का वेन्यू इज बिगर बिगर एंड बिगर एंड वेरी प्रीमियम सच में। तो अगर आपको इसको मिस नहीं करना है तो जितना तेज ये एंड में गरबा होता है ना उतनी तेजी से टिकट सेल हो रहे हैं। अगर आपने प्लान नहीं लॉक किया है अभी तक बुकिंग के लिए, जल्दी से sgs.org.sg नवरात्रि 2026 पे आप जा सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आप नंबर्स नोट कर लीजिए, राकेश चौहान 9271-9464, चिंतन गांधी 8967-8240 एंड मैनक पंचाल 9127-3620, ख्याति पटेल 9030-0749। इनमें आप कॉल कर सकते हैं इनको और अपनी क्वेरीज जो है उनके लिए इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास हमारे मस्ती हैंगआउट लिसनर्स के लिए एक बहुत ही अमेजिंग तरीका है टिकट गिव अवे का। यू हैव टू जस्ट आंसर अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपके पास इसके तीन ऑप्शंस होंगे और आपको सही जवाब भेजना है। द क्वेश्चन इज, गरबा का वो स्टाइल जहाँ पे लोग बैठ कर गाते हुए रिदमिक मोमेंट्स करते हैं, द ट्रेडिशनल गरबा स्टाइल जहाँ पे बैठ कर गाते हुए रिदमिक मोमेंट्स करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डांडिया रास, ऑप्शन बी बैठा गरबा, ऑप्शन सी गरबी। सही जवाब 9151-8963 पर भेजिए और आप टिकट्स जीत सकते हैं। तीन दिन अ बिग बिग बिग वेन्यू नवरात्रि जहाँ पे ऑडियंस सिर्फ देखने नहीं खुद सेलिब्रेशन करने आती है, ये तीन दिन बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, 16, 17 और 18 अक्टूबर के।
2: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा इट्स टाइम फॉर सिंगापुर गुजराती सोसाइटी प्रेजेंट्स सिंगापुर्स ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
3: માતાજી ને હમ કહીને કહું છું કે વા ફરે વાદળ ફરે ને વાયરો ફરે પણ એક વાર બોલ્યા પછી મારા મિત્રો આ મિત્રો કદી ના ફરે કે હાલો ને

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live. Keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
2: अच्छा, आप ऑफिस में यूजुअली लंच ब्रेक होता है तो हम क्या करते हैं? ऑफ कोर्स लंच ही खाएंगे, डिनर तो खाते नहीं। हाँ, थोड़ा कॉफी शॉफी ले लिया, कहीं बाहर निकल गए, स्क्रॉलिंग कर ली, मे बी ऑफिस से थोड़ा मेंटल एस्केप ले लिया हमने। लेकिन इमेजिन करो, लंच ब्रेक पर आप निकले, स्क्रैच कार्ड खरीदा और उसके बाद आपने मिलियनेयर बन गए, आपने $2 मिलियन जीत लिए और फिर टाइम देखकर कहा, ओह माय गॉड, ब्रेक खत्म हो रहा है, वापस गए और काम पे लग गए। अमेरिका के वर्जीनिया में एग्जैक्टली यही हुआ है। एक महिला का दिन जो है काफी स्ट्रेसफुल चल रहा था, वो थोड़ा सा खाना लेने निकली और साथ में एक $20 का प्लैटिनम स्क्रैच ऑफ टिकट लिया। स्टोर में उसको स्क्रैच किया, टॉप प्राइज $2 मिलियन। अब मुझे लगा कहानी खत्म हो गई, रेजिग्नेशन मेल सेलिब्रेशन बाय बाय ऑफिस, अब काहे की बात। नहीं भाई, नहीं, मुझे लगता है इतना ज्यादा दिन खराब था, किसने कहा कि चलो जीत लिया, चलो वापस काम पे चलते हैं। मैडम ने विनिंग टिकट संभाला, वापस वर्क प्लेस गई, अपनी शिफ्ट कंप्लीट की। बाद में उन्होंने लॉटरी ऑफिशियल्स को बताया कि उन्होंने ऐसा उनको बिहेव करना पड़ा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, ताकि किसी को पता नहीं चले। प्राइज कलेक्ट करते वक्त उनके पास दो ऑप्शन थे, 30 ईयर्स में फुल $2 मिलियन का या उसका लमसम। उन्होंने लमसम चूज किया एंड दैट वाज लाइक $9,52,000 बिफोर टैक्सेस, ऐसा कुछ मिला। आई हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इतना पैसा जीतने के बाद बॉस ने क्या कहा? कैन यू फिनिश दिस बिफोर 5? बॉस, आपको शायद पता नहीं है मैंने कंपनी खरीद ली है, सो यू आर माई एम्प्लॉय, गो एंड फिनिश दिस बिफोर 5। ज्यादा हो गया। देखो आप कैसा नॉर्मल फेस बनाते हैं, मुझे अपनी फोटो बना के खींच के भेजना।

सबको बच। अगर आप $2 million की लॉटरी जीत जाते हो और आप वापस जाके ऑफिस पे काम भी कर रहे हो, ऑनेस्टली ये सेल्फ कंट्रोल नहीं है, ये कॉर्पोरेट ट्रेडिंग का अमेजिंग लेवल है जहाँ पे कोई ऐसा कर सकता है भाई।

0: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxon India, the Family Expo is back with its grand 43rd edition celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition stanya, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo Mein. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxon India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxonindia.com.
1: तैयार हो जाइए जब ढोल बजेगा, डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा It's time for Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
2: Hangout करेंगे पर थोड़ा हटके. ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ
3: और सिंगापुर टाटा बाय बाय. मस्ती हैंगआउट यहीं पर रैप अप करते हैं. रैप अप बोलते मेरे को रैप खाने का मन कर जाता, भूख लग जाती है मुझे. मैं बहुत फूडी हूँ भाई. आज का शो ना एकदम हमारी दुनिया के जैसा था, थोड़ा यूजफुल, थोड़ा फिल्मी, थोड़ा फेस्टिव, इमोशनल एंड स्ट्रेंज बट ट्रू. हमने बहुत सी बातें की, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ क्या कर सकते हैं, मंचिंग फंचिंग दुनिया भर की हर एक चीज, है ना. मतलब कुछ था हर आर में अलग, लेकिन मूड एक था, लाइटर इंटरेस्टिंग. मेरा तो एम था कि मैं ये कर सकूं. तो अगर आज आपने बीच बीच में स्माइल किया मुझे सुन के, कोई मेरी बात याद रखी, आपको लगा ओ माय गॉड मुग्धा ने बताया था वी कैन डू दिस, है ना, ये गाना यार ये बड़ा अच्छा प्ले हो गया, तो बस मुझे याद कर लेना. मैं हूँ मुग्धा और आप सुन रहे थे मस्ती हैंगआउट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. अब बाकी का दिन आपके नाम कर दिया है मैंने. थोड़ा अच्छा खाइए, म्यूजिक सुनिए, जो चीजें कंट्रोल में नहीं है जाने दीजिए. मिलेंगे अगले शो में नए किस्से, नए गानों और नई बातों के साथ. बाय बाय, टेक केयर.

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: आएंगे
1: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
4: चेक इट आउट।
5: हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय।
6: नो नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे।
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space, Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
4: करण अर्जुन आएंगे
0: ना ही आरजेस आएंगे, हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए ड्यूटी पर। Non-stop music, non-stop musty. Only on Musty Music Cafe.
1: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे। और कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे?
2: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
3: नाचने का मन है
4: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
5: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

सांसों में तूफानों का डेरा,

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में।

यहाँ से कहाँ जाऊँ, कहाँ मैं छुप जाऊँ, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊँ, हूँ खुद से जुदा।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे। फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे
2: कैफे। महापुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
3: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे। मस्ती, मस्ती, मस्ती, मस्ती, मस्ती, मस्ती, मस्ती, मस्ती।

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है
2: तुमको लेकर
1: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है
3: मुझे जान पहले चलो
1: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन, फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक

हाँ हाँ तुम ही डीजे, तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, उसे वी प्ले बड़े बड़े हिट सुनो। आइए जी आइए, चाय जूस ब्लैक कॉफी वट एवर यू लाइक उसको लीजिए और बिल्कुल बैठ जाइए मेरे पास। यहाँ पर 5 बज चुके हैं दोस्तों, मंडे की शाम आ चुकी है। हेलो हाय वेलकम गुड इवनिंग नमस्ते, रेडियो मस्ती 24/7 पर शुरू हो चुका है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। ऑफकोर्स ये रिक्वेस्ट वाला शो है हमारा, आज का थोड़ा सा मैंने और भी खास बना दिया है बिकॉज ऑल द मोर आज जो है 28th of September है एंड दिस पर्टिकुलर डे इज वेरी वेरी मतलब सेलिब्रेशन तो बिल्कुल बनता ही है। आज है दो सुपरस्टार, एक लेजेंड एक सुपरस्टार, उनका हैप्पी वाला बर्थडे। वेल जहां की हमारे समर जी ने ऑलरेडी हमारी लेजेंडरी लता मंगेशकर जी जो है उनके ऊपर फ्राइडे को शो किया था जिसका ऑनकोर आज रात को आएगा, सो वी आर काइंड ऑफ सेलिब्रेटिंग हर समर जी के अंदाज में भी टुनाइट 9 PM onwards, जरूर ट्यून इन करिएगा। ब्यूटिफुल सॉन्ग्स वर प्लेड, आई वॉज लिसनिंग टू इट एंड आई एंजॉय इट टू द कोर। बट ऑल्सो आज है रणबीर कपूर का बर्थडे, दैट इज करेक्ट। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज आपसे पूछा जाए कि अगर आपका कोई ऐसा गाना है जो आपका लता मंगेशकर जी का फेवरेट गाना है या फिर रणबीर कपूर का फेवरेट गाना है, दोनों के एक एक फेवरेट गाने हो तो जरूर हमें बताएं। आज मस्ती वॉइस आपकी चॉइस में चलिए इन दोनों को आज सेलिब्रेट करते हैं। आई मीन इट्स सो डिफिकल्ट टू पिक राइट व्हेन वी टॉक अबाउट लता मंगेशकर जी और उनका एक वो गाना जो आप वी विल ऑलवेज गिव, यार एक तो बड़ा मुश्किल है एंड अगर एक दे भी दिया उसके बाद लगेगा कि ये अच्छा है, एक और बहुत अच्छा है, ये कभी सुना है, ये तो और भी ज्यादा अच्छा है। And it always happens like that. But one thing is for sure, चाहे वो लता मंगेशकर जी हो, चाहे वो रणबीर कपूर हो, दोनों ने अपनी like रणबीर कपूर ने मूवीज में और लता मंगेशकर जी ने अपने गाने के उससे बिल्कुल हमें बहुत खूबसूरत गाने दिए हुए हैं। सो या मेरा कुछ ऐसा ही इरादा था, तो आप जरा सोचें, सोच समझ के जरा हमें बताएं 9158963 पर। उसके अलावा देखिए बहुत सारा कुछ है, ठीक है, हमें आपको टिकट्स वगैरह भी अभी भी ऑफकोर्स हमारा फेस्टिव सीजन तो अभी चल ही रहा है, चलता रहेगा एंड दिस वीक इज ऑल्सो सो वेरी अमेजिंग राइट। हमारा एनिवर्सरी कह लीजिए, हमारा खुद का बर्थडे आने वाला है थर्सडे वाले दिन, सो देयर इज सो मच हैपनिंग अराउंड अस एंड इट्स नाइस। समटाइम्स आई लव दिस एनर्जी विच जस्ट मेक्स यू गो कि कोई बात नहीं, ये सब जब तक चलता रहेगा सब कुछ ठीक रहेगा। सो मेरे यहाँ पे आइस्ड अमेरिकानो बिल्कुल तैयार है, आई होप योर्स इज अस वेल, व्हाटएवर मतलब जरूरी नहीं मेरी जिंदगी तो आइस अमेरिकानो पे ही आजकल टिक गई है क्योंकि मैं एक कप से ज्यादा मुझे अलाउड नहीं है चाय पीना आजकल, देख रहे हो कहाँ से कहाँ तक आ गए हैं। गुड इवनिंग

0: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxon of India, the Family Expo is back with its grand 43rd edition, celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition stania, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo Mein. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxon India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxonindia.com.
1: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
2: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल। जोश में रहो,
3: गाना बजते ही नाचना जरूरी है। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
4: Oh my God, क्या डोज ऑफ नॉस्टैल्जिया आया है इस चीज को देखकर। एंड आई एम श्योर जब मैं इसके बारे में बात करूंगी आपको भी उतना ही नॉस्टैल्जिक फील होने वाला है। 5:00 हो चुके हैं, 19 मिनट, रेडियो मस्ती 24/7 अंतराब के साथ चल रहे हैं। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस एंड फिलहाल नॉस्टैल्जिया इज माई चॉइस। वाई, आई विल टेल यू वाई। व्हेन वॉज द लास्ट टाइम आपने बैठ के कुछ लिखा था, लाइक प्रॉपर? डू यू जर्नल? क्या आप डायरी लिखते हो, या फिर आपने किसी को ग्रीटिंग कार्ड में कुछ लिखकर भेजा था, या फिर आपने किसी को चिट्ठी लिखी थी, या फिर एंड यू नो देर वॉज दिस। बहुत सारे लोग उस दौर से जो है रिलेट कर पाएंगे जब रेज्यूमेज जो है हैंड रिटन हुआ करते थे। बाय द टाइम मैं नौकरी वगैरह के लिए मैंने अप्लाई करना शुरू किया, जब मैंने मास्टर्स कर रही थी तो ये कंप्यूटर्स सब कुछ आ चुका था। सो माई फर्स्ट रेज्यूमे वॉज नॉट हैंड रिटन दो, इट वॉज, बट इट वॉज अ वेरी बेसिक बेसिक चीज है। आजकल आप रेज्यूमे देख लीजिए, मतलब इतने शानदार, कातिलाना, ऐसी ऐसी चीजें, एंड क्रिएटिविटी हैज गॉट नो बाउंड्स। ठीक है, तो बहुत ही कमाल के होते हैं। हुआ कुछ ऐसा? हेलो हेलो सपना आंटी, गुड इवनिंग, बिल्कुल आपका स्वागत है। सो वेल, ये जो बंदा है इसका नाम है लूकस, एंड इन्होंने अपनी जो है रेज्यूमे हाथ से लिखी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल हेडिंग वाली है। हेडिंग के नीचे नेम, एज, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन एक्सपीरियंस, डेट ऑफ बर्थ, ऑब्जेक्टिव, स्टोरी, एंड द हैंड राइटिंग इज ऑल्सो वेरी नाइस। मतलब एक दो तरह की हैंड राइटिंग होती है, एक होती है कर्सिव वाली, ठीक है, जो कि एकदम फ्लो में जाती है, दूसरी होती है कुछ कुछ लोग की आदत होती है लेटर्स को अलग अलग उसमें लिखना, दे डोंट कनेक्ट इट बट दे राइट इट सो नाइसली दैट इट लुक्स वेरी क्लीन एंड वेरी नाइस। सो इन्होंने ये चीज लिखी एंड इट वेंट एब्सोल्यूटली वायरल। पीपल आर लाइक, इन द एरा ऑफ डिजिटल रेज्यूमेस दिस इज सच अ नाइस ब्रीदर। इतना अच्छा लग रहा है ये चीज देख कर कि ये कितना जो है, कितना ऑथेंटिक, एक टाइम पे इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी ज्यादा थी। And it feels very personal, क्योंकि even in fact इन्होंने जो अपना resume लिखा हुआ है इसमें कोई corporate buzzwords नहीं है, कोई elaborate कुछ graphics नहीं है, it's just handwriting and determination and a direct request to be given one chance, and sometimes simplicity works, it does work. हाय, क्या ही बात कह दी मैंने। अब आप मुझे बताओ कि last time आपने कब लिखा था। Either journal, so I write kind of almost every day, so well, रहते लिखते रहना चाहिए। हमारे ब्रजेश जी जो है उन्होंने एक गाना यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है, किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर जी, जिनकी आज है बर्थ एनिवर्सरी। वेल, जैसा देश वैसा भेस।

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: लाइफ कम्स बैक इन अ फुल सर्कल। कैसे बताती हूँ, थोड़ी देर में सारी सारी बातें बताऊंगी, लेकिन फिलहाल हो चुके हैं 5:32 स्टूडियो क्लॉक में, एंड यहाँ पर समय हो चुका है कि आपको इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट दिया जाए। व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन ब्रासपसा रोड टूवर्ड्स निकोल हाईवे आफ्टर बीच रोड, अवॉइड करें लेन नंबर 2। एक एक्सीडेंट की खबर है ऑन हैवलॉक रोड टूवर्ड्स, अगर आप जा रहे हैं न्यू मार्केट रोड आफ्टर किंग चौ स्ट्रीट, अवॉइड लेन नंबर 3। और मिलेगा आपको हैवी ट्रैफिक ऑन CTE टूवर्ड्स SLE बिटवीन चलान बहा गया एंड मर्चेंट रोड। वेल, ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट, एंड लाइफ फुल सर्कल में ऐसे लग रहा है आती हुई जा रही है। मैंने इस बात को इसलिए कहा क्योंकि जब आप बहुत ही मतलब टीन्स टाइप होते हैं तब आपको पूछा जाता है कि आगे का क्या सोचा है, तो तब आप ऐसे ही जवाब देते हो कि बस अब डिनर खाने जाऊंगा या जाऊंगी और फिर सो जाऊंगी, कल स्कूल चली जाऊंगी। लाइफ हैज कम बैक टू दिस कि अभी हाल ही में किसी ने पूछा कि आगे का क्या सोचा, मैंने कहा बस अब जिम जाना है इसके बाद, और फिर वही सेम रूटीन कल। इसके बीच में मैंने बहुत सारा सोच लिया बहुत सारे सालों में कि क्या करना है जिंदगी में आगे। डू यू फील लाइक दैट? डू यू Please tell me you feel like that. Coming up is another beautiful Lata Ji ka gana, of course along with Kishore Da. It's one of my favorites, and yeah, let's go for it. Remembering hamari really, really apni Lata Ji thi.

0: This Navratri season, skip the treadmill. Because the best kind of cardio comes with Dandiya Sticks. B-Indus presents Bollywood Dandiya Night. Where the colorful festive vibes meet Bollywood ka music, energetic dancing, good Indian food and exciting surprises.
1: Suat.
0: Join Kari Inka celebration on Saturday, 10th October, 6 p.m. onwards at Khalsa Association Building, Singapore. Tickets at $30 per adult and $15 per child with group discounts available. Call 9022-1210. Buy your tickets now. Call or WhatsApp 9022-1210.
2: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ
3: डोंट मिस एक्साइटिंग ऑफर्स ऑन हेल्दी स्नैक्स एंड क्रिशिबल प्रीमियम नट्स एट वेलोसिटी नोवीना स्क्वायर कियोस्क नंबर 12 11th टू 25th सितंबर शाम की चाय हो ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग
2: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ
3: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर
4: जीजी
3: क्रिशिबल नट्स ओनली ऑन gtmartonline.com प्रीमियम कैश्यूज कैलिफोर्निया आमंड्स पिस्ताचियोस पम्पकिन सीड्स मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस
4: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर

0: हिट्स आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यू से वी प्ले।
1: कहाँ जाऊँ मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे तो कुछ लिसनर्स एकदम ऐसे तैयार हो गए किसी भी दिन मेरी नौकरी जा सकती है। रेडियो मस्ती 24/7 अंतराफ के साथ यहाँ पर चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। भाई रिक्वेस्ट जो है बिल्कुल आनी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हमारी निकिता चारिंग ने मेरे को कहा कि यार ये गाना अंतरा सुबह से ना अटका हुआ है दिमाग में, कैन आई रिक्वेस्ट। अरे हुक्म करो भाई, आज तो आपका वाला दिन है, एक क्या दो तो गाने आप रिक्वेस्ट करो। तो ये तो हो गई ये वाली बात। फिर कहती एकदम घंटे के एंड में मत चलाना क्योंकि सबको पता चल गया घंटे के एंड में जो है ना गाना कट जाएगा। ओ माय गॉड, एंड दैट मेड मी फील लाइक अंतरा बेटा जल्द ही बहुत जल्द ही तेरी नौकरी खतरे में आ जाने वाली है। बट कमिंग बैक टू भाई, होता है यार कभी कभी कोई कोई गाना आपके साथ बिल्कुल इट स्टेज विद यू। एंड मेरे तो कभी कभी पता है बहुत ही वियर्ड गाने अटक जाते हैं सुबह सुबह। एक दिन वो जो मिथुन चक्रवर्ती का गाना था, नहीं गोविंदा का गाना था कि गुटर गुटर गुटर गुटर गुटर, यू रिमेम्बर दैट? आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, मैंने सुना भी नहीं था, अचानक से वो दिमाग में रह गया और मैं पूरे दिन यही हम कर रही हूँ। एंड एवरी टाइम आई एम हविंग द सॉन्ग एंड आई एम फीलिंग लाइक हेलो अंतरा, व्हाई दिस गाना, लाइक आउट ऑफ ऑल द गानास दिस वन। बट देयर इज अनदर वन आई वांट टू टॉक अबाउट। आई हैव बीन रिसेंटली ऑब्सेस्ड विद दिस गाना। इट्स कॉल्ड, इट्स अ बुंदेली डिवोशनल सॉन्ग। It's called जब जिद पे आ गई पार्वती। इतना मुझे the music, the lyrics and the way it has been sung, it is हनुमान अंश का ये गाना है and it is winning hearts. Now the song basically narrates the story of goddess Parvati जो है उनकी determination to have Lord Shiva as her husband and arrival of the Saptarishi rishis who attempt to convince her otherwise. Now the story is presented in this bundeli folk style and blending जो है traditional language and everything, folk music and storytelling. भाई बहुत प्यार मिला है इसको, बहुत ही ज्यादा। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स द सॉन्ग हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड 100 million व्यूज ऑन यूट्यूब। आप सोच सकते हो, इट इज क्रेजी एंड इट has already created history. It's number one in India and number two worldwide, aisa kaha ja raha hai. The song has been written and sung and composed by Sadhu S. Tiwari and film jo hai ye Hanuman Ansh, directed by Dr. Vishal Chaturvedi. Well, I'm going to play this song. I have heard the song so many times but still I'm going to play that song. That's my choice. But usi ke saath saath hamari Nikita ki choice jo hai, that is also another beautiful song. So stay tuned. I'm going to play it एंड घंटे के एंड में नहीं होगा। निकिता टेंशन मत लो तुम। गुड इवनिंग।

हाँ हाँ तुम ही डीजे, तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले बड़े बड़े हिट्स सुनो।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
3: बिल्कुल पहुंच चुके हैं 6 बजे के उस पार सिंगापुर टाइम। रेडियो मस्ती 24/7 अल्ट्रा आपके साथ, यहाँ पर मस्ती वॉइस आपकी चॉइस चल रहा है। अच्छा मुझे ये बात बताइए, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई दोस्त उसका ना आपसे बात करने का एक तरीका है, राइट? एवरी यू हैव दिस वन काइंड ऑफ यू नो जिसपे सिंक बैठता है आपकी बातचीत उस दोस्त से उसी तरह से होती है। सडनली आपका दोस्त आता है और कहता है कि आदरणीय आरजे अंतरा दीदी को बहुत सारा प्यार और स्नेह दी, और हाथ जोड़ने वाले इमोजी आ रहे। कुछ देर तक मैंने सुनील के इस मैसेज को देखा और मैं कहा कि ये इसने मेरे लिए भेजा है, अच्छा इतनी इज्जत क्या हो गया आज। बट उसके बाद देन ही काइंड ऑफ जो है बिल्कुल अपने उस पे आ गए नॉर्मल उस पे कि नहीं नहीं आज बताओ कौन सा सॉन्ग सुना जाए। फिर मुझे सांस में सांस आई, भाई आप लोगों के हर किसी के साथ मेरा कुछ ना कुछ ऐसा पहले कनाता कोई यू ही नहीं दिल लुभाता कोई सबके साथ बना हुआ है। तो जब आप ऐसे ऐसे मैसेजेस भेजते हो सुनील तो फिर डर तो लगता ही है। गुड इवनिंग। वेल डरने वाली कोई बात नहीं है। बिंदास का एक गाना है फ्रॉम द मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। सो आप जरा लाल पीली आंखियां करके वापस आए, फिर हम आपको बताएं कि कौन किसने मारे हैं 15,000, क्या मारे हैं 15,000।

0: हाँ, तुम ही डीजे, तुम ही हो। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, उसे वी प्ले। बड़े बड़े हिट सुनो।
1: All right, let's talk cricket. 6:00 हो चुके हैं, 6 मिनट, रेडियो मस्ती 24/7, गुड इवनिंग, मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यहाँ पर चल रहा है और मेरी चॉइस का नंबर है 15,000। बिकॉज भाई जब कोहली साहब ऐसा नंबर दे तो उसको याद ही रखा जाता है। आई थिंक कोहली जो भी करे तो उसको याद ही रखा जाएगा फॉर अ वेरी वेरी गुड लॉन्ग टाइम। विराट कोहली हैज जस्ट एंटर्ड अ क्लब जहां पे उनसे पहले सिर्फ एक ही इंडियन लेजेंड खड़े थे, वो है हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। सो संडे को कल के दिन में तिरुवनंतपुरम जो है इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच फर्स्ट ओडीआई खेला गया। वेस्ट इंडीज बैटेड फर्स्ट एंड स्कोर 295 फॉर द लॉस ऑफ 7। जस्टिन ग्रीव्स जो है उन्होंने हिट की एक सेंचुरी और इंडिया के लिए कुलदीप यादव ने कमाल की बोलिंग विद 4 विकेट्स। ओके, अब इंडिया को चेज करने थे 296 और चेज हो विराट कोहली हो तो फिर कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है मेरे दोस्त। सो मैच शुरू होने से पहले विराट नीडेड 59 runs to reach 15,000 ODI runs और अल्जारी जोसेफ की बॉल पर एक बाउंड्री के साथ देयर इट वाज 15,000 ODI के runs। इसके साथ विराट कोहली बिकेम ओनली सेकंड बैटर इवन आफ्टर सचिन तेंदुलकर टू रीच दिस माइलस्टोन। लेकिन इसी के साथ साथ इनफैक्ट जो है एक स्टैट सामने आया दैट सचिन तेंदुलकर जो हैड रीच्ड 15,000 इन 377 इनिंग्स एंड विराट कोहली ने वही लैंडमार्क सिर्फ 303 इनिंग्स में कंप्लीट करके दिखाया। सो फास्टेस्ट एवर टू 15,000 ODI रन्स एंड माइलस्टोन हो गया तो विराट रुक जाएंगे, ऐसा कभी हुआ है नहीं। He went on to smash an unbeaten 139 off just 88 balls with 10 fours and 9 sixes and साथ में आ गई उनकी 55th ODI century. In fact, Shubman Gill जो है उन्होंने भी शानदार 110 रन बनाए एंड इंडिया chased down 296 in just 41.4 overs winning the match by 8 wickets. मतलब एक ही मैच में 15,000 भी, 55th ODI 100 भी, unbeaten 139 और इंडिया की विक्ट्री भी। भाई कौन कहता है सचिन और विराट की एरा हाँ अलग है, क्रिकेट बदल गया है, लेकिन 15,000 ओडीआई रन्स के स्पेशल क्लब में तो अभी सिर्फ दो ही नाम है बंधु। एक ही सवाल आता है विराट कोहली को देख कर कि पिक्चर अभी कितनी बाकी है मेरे दोस्त किंग कोहली। उन्होंने कहा है कि अभी तो 2027 वाली भी बाकी है। यू नो, आई नो, वी ऑल नो। वेल, ये तो हो गई हमारी क्रिकेट की बात, बट यहाँ पर जो है बहुत ही एक खास गाना मैं प्ले करने वाली हूँ। माय मॉम हैज ट्यून्ड इन ऑल द वे फ्रॉम इंडिया एंड आई वांटेड टू प्ले समथिंग रियली नाइस फॉर हर, समथिंग जो मेरे दिल से निकलती हुई आवाज है माते। सो द अगला गाना इज माई चॉइस फॉर माई मॉम हु इज लिसनिंग टू इट। एंजॉय।

0: Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged, your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
1: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा डांडिया थनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा इट्स टाइम फॉर सिंगापुर। गुजराती सोसाइटी प्रेजेंट्स सिंगापुर्स ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
2: भाई मैं तो कहती हूँ कि इस 16th, 17th और 18th ऑफ अक्टूबर को आपकी चॉइस होनी चाहिए सिंगापुर गुजराती सोसाइटी का सिंगापुर ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि। भाई आई लव फेस्टिव सीजन एंड स्पेशली ये वाला और भी ज्यादा। इट्स जस्ट कीप्स ऑन गेटिंग एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर। व्हाट अबाउट योर चॉइस, जाओगे ना आप?
3: बजते ही नाचना जरूरी है। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
2: See, if you have not planned it up and if you have not got your tickets and all those things, let me tell you, bhai, ye to hona hi hona hai. Navratri ka season aaye and we don't talk about Singapore's original, truly original Navratri, yani ki Singapore Gujarati Society jo lekar aate hain. I mean, this is absolutely amazing. Dekhe, teen din, 16th, 17th and 18th jo hai. इस बार इन्होंने जो है वेन्यू चेंज किया हुआ है एंड इट्स अ वेरी प्रीमियम एंड अ वेरी रिच एंड अ वेरी अमेजिंग जो है वेन्यू, लगुना बॉलरूम दूसरे थानी लगुना। ओके, इट इज रियली नॉट ओनली इट इज वेरी रिच एंड क्लासी, बट मैं सिर्फ इमेजिन ही कर पा रही हूँ कि जब एक्चुअली मैं वहां पर गरबा और डांडिया खेला जाएगा तो वो कितना ही ज्यादा खूबसूरत लगने वाला है। टिकट्स जो है बिल्कुल हाथ से निकलती हुई चली जा रही है। बट वेल, यहाँ पे जो टिकट्स हैं $25 ऑनवर्ड है, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। यू ओनली हैव टू काइंड ऑफ लॉग इन टू sgs.org.sg/navratri2026। आप अपने टिकट्स जो है अपने अपने फैमिली के अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल वहां पर जाकर बुक करा सकते हैं। टिकट्स आर रियली रियली सेलिंग फास्ट, सो यू हैव टू बी लाइक जस्ट आप अभी मेरे कहने पे चले जाओ इस पे। और अगर अभी तक नहीं सुनाई दिया है कि कहाँ पे जाना है, कहाँ लॉग इन करना है, कोई नहीं, वापस से पूछ लो, मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ पे लॉग इन करना है एंड गो एंड गेट योर टिकट्स राइट अवे। बट उसी के साथ साथ अब आंत्रा आई है तो कुछ देकर ही जाएगी, यही आप सोच रहे हो? करेक्ट, बहुत सही सोचा आपने। सो वेल, हम इतना यहाँ पर डांडिया और नवरात्रि की बात करते हैं बिकॉज दिस इज सिंगापुर ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि। सो आई वांटेड टू नो कि हाउ वेल डू यू नो अबाउट डांडिया गरबा एंड नवरात्रि। आर यू रेडी? अगर आपको सिंगापुर गुजराती सोसाइटी के इस नवरात्रि के बिल्कुल डांडिया या गरबा में जाना है और टिकट्स जीतनी है तो मेरा सवाल जो है काफी इंटरेस्टिंग है। ओके, उसका जवाब आपने ए बी या सी में से देना ही है। ठीक है, चलो आपको पूछती हूँ, व्हाट इज बैठा गरबा? व्हाट इज बैठा गरबा? आपका ऑप्शन ए, गरबा परफॉर्म्ड व्हाइल सिटिंग डाउन। ऑप्शन बी, गरबा परफॉर्म्ड ओनली बाय किड्स। ऑप्शन सी, गरबा परफॉर्म्ड विद डांडिया स्टिक्स ओनली। ए बी या सी, बैठा गरबा क्या है? ए, गरबा परफॉर्म्ड व्हाइल सिटिंग डाउन। बी, गरबा परफॉर्म्ड ओनली बाय किड्स। सी, गरबा परफॉर्म्ड विद डांडिया स्टिक्स ओनली। अपना आंसर जो है 9151896 पर बिल्कुल भेज दीजिए। एंड अनदर वेरी वेरी अमेजिंग थिंग अबाउट दिस वन इज दैट ऑल एज ग्रुप्स आर बीइंग इंक्लूडेड दिस टाइम अराउंड इन सिंगापुर गुजराती सोसाइटी की। नॉट ओनली द किड्स बट ऑल्सो डेब्यू कर रहे हैं सीनियर सिटीजन्स भी। इजंट दैट अमेजिंग? इजंट दैट अमेजिंग? आई थिंक दैट्स crazy amazing. So well, definitely go grab your tickets, otherwise answer this and win your tickets over here. Kuch bhi chalega. Good evening.

मैं जस्ट बंदर है बर्फी और रॉक स्टार जैसी मूवी की है, उसने एक बेशरम टाइप की मूवी भी की है. बट भाई मूवी चली हो या ना चली हो, हमारे बर्थडे बॉय रणबीर कपूर का ये गाना जो है बड़े दिनों बाद इंस्टाग्राम में ट्रेंड होकर अभिजीत की आवाज में सुनील का रिक्वेस्ट बन के आज प्ले होगा 6:26 पे ऑन द एयरवेव्स ऑफ रेडियो मस्ती 24/7. लेट्स गो.

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: Wow, from one birthday to another, let me tell you, but पहले ट्रैफिक का अपडेट लेंगे। 6:32 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक पे, रेडियो मस्ती 24/7, अंतरा आपके साथ। व्हीकल ब्रेकडाउन इस घंटे आपको मिलेगा ऑन BKE towards Woodlands after KJE। एक एक्सीडेंट की खबर है ऑन TPE towards SLE at Loyang Avenue exit, और हैवी ट्रैफिक आपको मिलेगा बिशान फ्लाईओवर पर towards Bartley between CTE and Upper Thompson Roads। So well, ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। अभी आपने जो गाना सुना, that was from the movie बेशरम, रणबीर कपूर है इस मूवी में, आज रणबीर कपूर का हैप्पी वाला बर्थडे है। बट उसी के साथ साथ आज है हमारी लेजेंडरी लता मंगेशकर जी की बर्थ एनिवर्सरी एज वेल। जस्ट यू क्विकली रिमाइंड यू, आज का ऑनकोर जो है हमारे समर जी का, वो भी लता जी का जो है वो उन्होंने शो किया था फ्राइडे को, एंड यू इफ यू मिस्ड इट, ओ माई गॉड, there were some beautiful, I think all the numbers were really really beautiful, but one of them is here, Nanda ji hamari jo hai, unhone mujhse request kiya hai Lata ji ki awaaz mein, it's again for all the moms out there, and how only some lyrics aur ye awaaz aur ye gaana band kar itna khoobsurat ban jata hai, aur jab ye kehta hai ki tu kitni achhi hai, tu kitni pyari hai, kitni bholi hai, we all feel it, right? Nanda ji, aapki request, here you go.
3: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: की प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला। मस्ती बॉयस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
1: भाई क्या चल रहा है, क्या ही चल रहा है और कहां तक ये कहानी जाएगी। कभी कुछ लेकिन अपडेट्स आते रहते हैं, तो फिर हमें भी आपको अपडेटेड रखना पड़ता है। वेलकम बैक, गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मस्ती 24/7 अंतराप के साथ यहाँ पे चल रहा मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। एंड सडनली अगर आपने थोड़ी देर पहले ही ट्यून इन किया है एंड आपको लगा कि यार इतना पुराना गाना इस वक्त क्यों चल रहा है, भाई आज सिर्फ और सिर्फ लिसनर्स की चलती है क्योंकि ये है हमारा रिक्वेस्ट शो। एंड उसके ऊपर से आज है दो जो है बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक रणबीर कपूर का और एक याद कर रहे हैं हमारे लता जी का क्योंकि उनकी भी बर्थ एनिवर्सरी सेम ही डे पे है। सो एपिक जो है यहां से एक सबके फेवरेट्स चुन चुन के निकल रहे हैं। अगर अभी तक आपने नहीं किया है कोई गाना रिक्वेस्ट, देन दिस इज द टाइम माय फ्रेंड्स, 9151896 पर कर दीजिए रिक्वेस्ट। इससे अगला वाला रिक्वेस्ट भी जो है वो भी यहाँ पे बिल्कुल तैयार है। बट पहले हम गॉसिप देंगे। गॉसिप कुछ ऐसी है कि दोस्तों ये जो हमारे चीची है, चीची कोई मूवी तो कर नहीं रहे हैं बट हर जगह पे छी छी चल रहा है, मतलब हर जगह पे उनकी बातें ही चल रही है कि उनका किसी के साथ है, उनका किसी के साथ नहीं है। भाई गोविंदा के साथ साथ उनकी वाइफ जो है सुनीता आहूजा, उनके भी काफी चर्चा में वो अब रहती है। बट इन दोनों के घर का मसला जो है वो काफी पब्लिक हो रखा है, ये तो हमने सभी ने देखा हुआ है। सो अभी जब गणपति जी का समय गया तो वहां पर हमारे गोविंदा जी नजर आए, जिनके साथ वो एक बार एयरपोर्ट पे भी वो नजर आए थे, कोमल नाम है उनका। और फिर सब जगह पे आर्टिकल्स आ गए कि भाई कुछ तो बहुत ही सॉलिड ही यहाँ पे हो गया है क्योंकि ये तो यहाँ पर भी है। अब उसमें क्या हुआ, सब जाके पूछा कि अरे वो वहां पे उनके साथ थी तो आप वहां पे, आप कहाँ है, आपको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। सुनीता आहूजा ने पहले तो बहुत ही ज्यादा काम एंड बड़े अच्छे से रिस्पॉन्सेज दिए कि भाई गणपति के टाइम पे गणपति की बात करो, ये सारी बातें मुझसे मत करो इस टाइम पे क्योंकि शोभा नहीं देता है। ओके, वेरी गुड। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो जो कोमल जी जो गोविंदा के साथ नजर आई, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कुछ ऐसा कहा कि जिनका घर ऑलरेडी टूटा हुआ हो और जब हो गया है सारा काम तो उसमें कोई बाहर वाला क्या ही कर सकता है, टूटे हुए घर को और कौन ही तोड़ सकता है। आप देख रहे हो यहाँ पे अलग ही मूवी बनती हुई जा रही है। एंड उसके रिस्पॉन्स में अभी जो है हमारी सुनीता आहूजा जो है उन्होंने कहा है कि देख रहे हो आप सब लोग, मेरा घर टूट रहा है, अब मैं ये वाले मंदिर में आई हूं माथा टेकने के लिए क्योंकि मेरा घर टूट रहा है। अल्टीमेटली हो क्या रहा है हम में से किसी को भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है दोस्तों, बस यही है वो। हम एक काम करते हैं, हम वापस चलते हैं, इनके अपडेट्स तो आते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए देयर इज अ ब्यूटीफुल गाना विच इज वेटिंग फॉर अस। नेहा और श्रेया दोनों ने मिलकर जो है सेम ही रिक्वेस्ट यहाँ पर दी है। रणबीर कपूर डिड अ लॉट ऑफ फैबुलस फिल्म्स, वन ऑफ देम वाज बफी, ऐसे करके बोलता था ना उस मूवी में, एंड उस मूवी का ये गाना ओए होए क्या ही, मतलब अरिजीत सिंह की आवाज एंड इसके भी लिरिक्स कमाल, म्यूजिक कमाल एंड द वे अरिजीत सिंह ने गाया है वो भी ओह हो, लेट्स गो।

0: हाँ, तुम ही डीजे तुम ही हो। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, उसे वी प्ले। बड़े बड़े हिट सुनो।
1: A battle which goes on between me and Davinder Paji. Davinder Paji कहते हैं कि मैं ये गाना तो तुम ढूंढ के बताओ और मैं हमेशा हर रिक्वेस्ट शो पे जो है ढूंढ के जरूर बताती हूँ. So well, Davinder Paji, आपका ये गाना और अरमान मूवी का बिल्कुल यहाँ पे पेशे खिदमत है. मस्ती वॉइस आपकी चॉइस. अगर आपको भी कोई गाना रिक्वेस्ट करना हो तो हमें बताएं यहाँ पर 9158963 पर.

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक

हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस उसे वी प्ले बड़े बड़े हिट्स सुनो। सात बजे के उस पार आप सभी का स्वागत है रेडियो मस्ती 24/7 अंतराप के साथ एंड यहाँ पर चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस और धीरे धीरे जो है सबकी चॉइसें जो है यहाँ पे प्ले करती हुई जा रही हूँ। एक घंटा और बाकी है तो अगर कोई चॉइस ऑफ सॉन्ग दिमाग में और जहन में आ जाए तो फिर बस बता दीजिए हमें 9518963 पर एंड डेफिनेटली 110% मैं यहाँ पे आपके लिए वो ढूंढ कर प्ले करूंगी। बहुत मेहनत मेहनती बच्चा हूं मैं बट भाई मुझे ऐसा लग रहा है सलमान खान भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं आजकल। वो डांट लगाते हुए मुझे सुनाई में आ रहे हैं, कभी किसी को डांट लगा रहे हैं, कभी किसी को डांट लगा रहे हैं। मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि वो वाली बात होती है ना कि जब एक एक एक उम्र के बाद आप उस वाली कैटेगरी में आ जाते हो जहां पे सारे बच्चे सोचते हैं ये वाले अंकल तो डांटते ही रहते हैं जब देखो बट सीरियसली मेरे को ऐसी वाली फील आ गई। नो ऑफेंस फॉर ऑल द सलमान खान फैंस आउट देयर, मैं ऐसे ही बात कर रही थी बट व्हाटएवर ही सेड इट मेड सेंस, इट वाज गुड, अच्छी बात के लिए डांट रहे थे। तो वो बड़े बॉस का घर जहाँ पे आजकल ये पता नहीं कौन सा 10,000th सीजन चल रहा है उसका, तो वहां पे डांटते हुए ये नजर आया। ही वॉज एड्रेसिंग द इशूज ऑफ डिजिटल सेफ्टी एंड AI जनरेटेड ये जो डीप फेक्स हैं एंड ये सारी चीजें हैं, तो वही वो बात कर रहे थे कि इट कॉल्स फॉर स्ट्रिक्ट सोशल मीडिया के लॉज। किसी ने आपकी AI वॉइस लेके डब करके किसी को कुछ उल्टा सीधा कह दिया एंड नो व्हाट दे आर डूइंग, AI वीडियोस बना रहे हैं बहुत सारे लोगों ने एंड इनफैक्ट ही सेड दैट कई वीडियोस में तो मैं खुद ही हूं एंड जो है कि सलमान खान वहां पर था। जिनको ये बात पता नहीं जिन्होंने वीडियो बनाया है व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर दे, नाउ दोज काइंड ऑफ पीपल शुड बी पुट बिहाइंड द बार्स। जब तक कोई एक एड दो ऐसा अंदर नहीं जाएगा, एक दो अंदर नहीं जाएगा तब तक ये रुकने वाला नहीं है एंड बिल्कुल बिल्कुल हम मानते हैं जाना तो बहुत सारे लोगों को अंदर चाहिए उस हिसाब से, लेकिन ठीक है सर काम कर रहे हैं सब अपनी पेस से। अब मैं उसके सामने और आगे क्या ही बोलूं, है ना। नंदा जी आपका दूसरा रिक्वेस्ट जो है वो प्ले कर देते हैं यहाँ पर, तू झूठी मैं मक्कार। ओके आई थिंक रणबीर कपूर का एक ही ये बड़ा ही अच्छा सा उन्होंने ट्रेंड बना दिया कि भाई मूवी चले ना चले गाने जरूर चलने चाहिए। सो दिस इज अनदर वन, इट्स कॉल्ड प्यार होता होता होता। मैं तो आपकी रेंज देख के जो है नंदा जी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गई थोड़ी देर पहले पिछले घंटे में, तो कितनी अच्छी है टू नाउ प्यार होता होता। आई लव इट, आई लव इट बिकॉज मेरी रेंज कुछ ऐसी है। So in sync. Good evening.

0: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा इट्स टाइम फॉर सिंगापुर गुजराती सोसाइटी प्रेजेंट्स सिंगापुर्स ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
1: Healthy khao, protein khao. Healthy khao, protein khao.
0: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Krishival premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. Shaam ki chai ho, office ka break ho, ya late night binge watching.
1: Healthy khao, protein khao. Healthy khao, protein khao.
0: Healthy munching ka perfect partner. Aap sirf ek click door.
2: GG.
0: Krishival nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana, or भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: वार्निंग, गाना बजते ही नाचना जरूरी है। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। यू से वी प्ले।
4: मैंने कहा ना, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता हुआ जाता है, वैसे वैसे ये फेस्टिवल का सीजन जो है और भी ज्यादा कमाल का होता हुआ जाता है। नवरात्रि यानी कि दुर्गा पूजा भी, और उसी के साथ साथ जब इतने सारे फेस्टिवल्स हो तो एक चीज जरूर हमारे ध्यान में रहती है कि भाई शॉपिंग भी उसका एक एसेंशियल पार्ट बन जाता है। बट कहां जाएं शॉपिंग करने, तो लेट मी हेल्प यू विद दैट। रेडियो मस्ती 24/7 7:17। भाई हर चीज का जो है तोड़ यानी कि इंतजाम है हमारे पास। दीपावली की आपको करनी है शॉपिंग, एंड देन इमेजिन कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जयपुर, कोलकाता, हैदराबाद, कश्मीर, पंजाब, सबकी शॉपिंग एक ही जगह। कहाँ है ये जैक सलाम इंडिया की मैं बात कर रही हूँ। दे आर बैक विद दिस 10 डेज ऑफ दीपावली बिगेस्ट डिस्काउंट सेल ऑफ द ईयर। 16 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, 25 अक्टूबर तक चलने वाला है। यू हैव टू हेड डाउन टू सिंगापुर एक्सपो एंड गेट रेडी फॉर दिस 10 फुल डेज ऑफ शॉपिंग एंड फेस्टिव वाइब्स एंड एंटरटेनमेंट एंड सो मेनी chances to win. देखिए शॉपिंग तो होगी होगी, बट देर इज सो मच हैपनिंग एज ऑलवेज। देर इज डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन, चाहे वो रंगोली कॉम्पिटिशन हो, कुकिंग कॉम्पिटिशन हो, कैरम, चेस, डांडिया, देन देर आर ज़ैक कम्युनिटी अवार्ड्स, देर आर स्पेशल दीपावली प्रोग्राम्स एंड प्राइजेस। Oh, things get really interesting here. You could win mobile phones, cruise dinner ke vouchers, and there are daily giveaways as well. Bhai, visitors, they can also register for a chance to win free air tickets to destinations like Dubai, London, Paris, New York, and Rome. Ye Deepavali ki shopping karne gaye the, kya pata return mein international holiday plan ban jaye. Isse better to I think ho hi nahi sakta. Mujhse pucho, mere dil mein aise fireworks jo hai chal rahe hain, sirf aapko batate hue. So well, save these dates, 16th to 25th of October, 10 days of shopping, discounts, competitions, entertainment and giveaways by Zak Salam India Expo, and entry is absolutely free. और बिल्कुल जाना ही जाना है, ढेर सारी शॉपिंग जो है वो करनी ही करनी है, और अपने लिए तो करनी है, मेरे लिए भी करनी है। वेल, एक फिलहाल बढ़ते हैं आगे, और जो गाना काफी आई थिंक 5 बजे वाले घंटे में आई वॉज टॉकिंग टू निकिता एंड आई वॉज लाइक कि ये एक और गाना है जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, अरिजीत सिंह की आवाज। इट इज फ्रॉम द मूवी लव आजकल। इट्स कॉल्ड शायद। लेट्स गो फॉर इट ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट
2: 7 बजकर हो चुका है 28 मिनट। रेडियो मस्ती 24/7 पर टाइम फॉर ट्रैफिक अपडेट। एक्सीडेंट्स की यहां पर खबर आई है। एक्सीडेंट हुआ है ऑन AY-E टुवर्ड्स टुवर्स एट टुवर्स वेस्ट रोड एग्जिट। एक और एक्सीडेंट की खबर है ऑन बिरॉक रोड टुवर्ड सिटी आफ्टर अपर चौंगी रोड ईस्ट। अवॉइड करें लेन B2। और मिलेगा इस वक्त हैवी ट्रैफिक ऑन PIE टुवर्ड्स टुवर्स बिटवीन CTE सिटी एंड पायलाबार रोड। वेल, ये था इस घंटे का फिलहाल ट्रैफिक का अपडेट। कमिंग अप नेक्स्ट इज अनदर सॉन्ग, सखियां 2.0 नाम है इसका। एंड वेल, अभी जो रेट्रो गाना आपने सुना, दैट वाज सपना आंटी की रिक्वेस्ट और मस्ती वॉइस, आपकी चॉइस। आधे घंटे और है, अगर आपके पास कोई गाना सुनने का मूड है तो मुझे जरूर बताएं। 9158963 पर। गुड इवनिंग।

0: हिट्स आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यू से वी प्ले।
1: ऑलराइट, चलिए थोड़ा बहुत आपको टेक टेक भी दे देते हैं इस घंटे में रेडियो मस्ती 24/7 पर अंतरा यहाँ पर मस्ती वॉइस आपकी चॉइस जो है वो बिल्कुल चल रहा है। इंस्टाग्राम जो है उन्होंने अब एक और फीचर दे दिया है व्हिच आई थिंक इट्स क्वाइट नाइस। अच्छा है तो अब सिचुएशनशिप भी सेफली आप पोस्ट कर सकते हो। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल सी सिचुएशनशिप अभी तक समझ में नहीं आया है अंतर क्या होता है। वो जो पहले के टाइम में होता था कि करे नहीं करे, हाँ मतलब नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, बीच में है कहीं पे मामला, तो वैसा ही कुछ होता है। सो इंस्टाग्राम स्टोरीज में आया है कि दिस न्यू एआई पावर्ड पिक्सल इफेक्ट वाला सिस्टम जहां पर बेसिकली यू कैन टेल एआई व्हाट यू वांट हिडन और पिक्सेलेटेड आपके फोटो में। फॉर एग्जांपल फोटो अच्छी है बट अगर आपको उस फोटो में किसी का फेस नहीं दिखाना है, जस्ट डिस्क्राइब व्हाट यू वांट एज ऑब्स्क्योर्ड एंड द इफेक्ट कैन पिक्सेलेट उस पर्सन या ऑब्जेक्ट को। रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं ये द फीचर वर्क्स फ्रॉम within the stories ka editor itself. Ab iska sensible use to obviously hai, maybe you are posting a family picture ya fir bacche ka face jo hai public nahi karna hai ya background mein koi stranger aa gaya hai, instead of manually editing the picture somewhere else Instagram ke andar hi ab wo kaam ho sakta hai. But internet sensible cheez ko sirf sensible tarike se use kare kab hua hai aisa? So people are already joking that this could become the ultimate soft launch ka tool and date night ke picture dalo, samne wale ko पिक्सेलेट कर दो, कैप्शन डालो गुड इवनिंग और फिर कमेंट्स में सबको डिटेक्टिव बनने दो कि कौन है कौन है कौन है। एंड ऑफ कोर्स यू नो एज कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा टाइम है। सो द टेक्नोलॉजी बिहाइंड दिस न्यू इमेज का एक्सपीरियंसेस कम्स फ्रॉम मेटा का म्यूज इमेज। वो एक छोटा सा क्यूट सा है, आपने एक देखा होगा, बिल्कुल बंदा एकदम बीच में जब आप स्टोरीज अपलोड कर रहे हो तो नीचे नजर आता है। सो विच मेटा सेज इज पावरिंग एआई क्रिएटिव टूल्स अक्रॉस इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। सो मेटा अनाउंस्ड मोर देन 30 एआई पावर्ड स्टोरी इफेक्ट्स व्हेन इट इंट्रोड्यूस्ड म्यूज का इमेज इस बार। सो टेक्नोलॉजी आई थिंक आई लव इट, इट्स रियली गुड। पहले इंस्टाग्राम पर प्रॉब्लम थी कि फोटो में कौन है, अब फीचर आ गया है स्पेसिफिकली कहने के लिए फोटो में कोई है बट आपको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पिक्सलेट कर दिया है, अब आप सोचते रहो कि कौन है ये। या आई नो कायदे से तो ऐसा ही होना चाहिए, शायद नहीं भी होना चाहिए, बट वेल इट इज व्हाट इट इज। और अपडेट देने के लिए हम है ना मस्ती मीडिया 24/7। गुड इवनिंग।

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: ब्यूटिफुल सॉन्ग. कायदे से तो बहुत सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन जो भी करो कायदे से करो, ये भी उतना ही बड़ा सच है. रेडियो मसीह 24/7 के साथ, और सिंगापुर यही बात मैं कर रही हूँ कि कभी कभी एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम हस कैन मीन अ लॉट टू समवन हु इज काइंड ऑफ रीबिल्डिंग अपनी जिंदगी. नेपाल फ्लड रिलीफ फंड की मैं बात कर रही हूँ, एंड दे आर इन्वाइटिंग मेंबर्स ऑफ द पब्लिक टू कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट कम्युनिटीज जो अफेक्ट हुई हैं बाय द डेविस्टेटिंग फ्लड्स इन नेपाल, एंड वी ऑल नो अबाउट दैट. एक डोनेशन बूथ जो है वो सेटअप किया गया है एट द एंट्रेंस ऑफ लिटिल इंडिया आर्केड, 48 सरंगून रोड पर, एंड इट विल बी इट इज देयर सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक. 3 अक्टूबर तक ये रहने वाला है वहां पर. कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, दैट रियली इज नॉट द पॉइंट. छोटा है बड़ा है, एवरी कॉन्ट्रीब्यूशन मैटर्स. आपकी तरफ से दिया गया सपोर्ट रिलीफ एफर्ट्स में हेल्प कर सकता है, एंड इट कैन ब्रिंग सम मच नीडेड असिस्टेंस एंड होप टू अफेक्टेड फैमिलीज. ये इनिशिएटिव जो है सिंगापुर Red Cross as beneficiary and Hindu Volunteers Network along with a lot of community partners and of course Sikhi backing it up and us also standing with them. So agar aap Little India ke taraf ja rahe hain, aas paas hai, koi plan hai, just take out few minutes, stop by the donation booth and contribute whatever you comfortably can. Once again, Nepal Flood Relief Fund at the entrance of Little India Arcade, 48 Serangoon Road. 8 baje tak, 3 October tak ye aapko booth wahin pe milega. This is because sometimes helping doesn't need to be something really huge, but jitna humse ho sake utna bhi kisi ke liye bahut ho sakta hai, isn't it?

हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यू से वी प्ले बड़े बड़े हिट्स सुनो।

0: दीवानगी दीवानगी तो बिल्कुल ही बनी रहेगी, क्योंकि भाई ये मस्ती वॉइस आपकी चॉइस की दीवानगी है. आफ्टर ऑल ये मस्ती मीडिया 24/7 की दीवानगी है. आफ्टर ऑल ये दीवानगी बिल्कुल ही बनी रहनी चाहिए. अब ये दीवानगी लेकर ये दीवानी खाएगी यहाँ से जीजी मार्ट से आए हुए कृष्णवल के नट्स. और नट्स खा के नट्स मैं ऑलरेडी हो रखी हूँ, बट देन फिर भी हेल्दी नट्स खाकर जो है हम अपना प्रस्थान करेंगे जिम की ओर. और आपसे मुलाकात होगी कल सुबह, क्योंकि कल है मंगलवार दोस्तों, कल है मंगलवार. मंगलवार के दिन क्या होता है, मंगलवार के दिन आपकी दोस्त जो है ना एकदम सुबह सुबह आ जाती है, एकदम अर्ली मॉर्निंग पहुंच कर जो है आपको 7 से 10 बजे तक बिल्कुल एंटरटेन अपडेट करने के लिए हाजिर हो जाऊंगी. तब तक के लिए यू हैव अ फैंटास्टिक इवनिंग अहेड एंड या गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, ड्रीम अबाउट मी, या ड्रीम अबाउट मी इन वेरी मच पेन इन द जिम. Yeah, and no. Just dream about something, guys. Good night. Kuch bhi. Good night.
1: Kiniya galla ve tu karda hai, karda hai. Niya me niya galla te tu.

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: हेलो नमस्कार आदाब। इनकलाबी शायर हबीब जालिब जब 1976 में 1976 में जेल में बंद थे तो वो फिल्मी गीत सुना करते थे। जेल में उनको जो रेडियो दिया गया था उसके ऊपर वो रेडियो सिलोन ही लगा लिया करते थे। उस अंधेरी दुनिया में उन्हीं गीतों ने उन्हें जिंदा रखा और तब उन्होंने अपनी राइटिंग के इनकलाबी अंदाज से एकदम अलहदा अलग हटकर एक नज्म लिखी किसी की आवाज पर। लिखा उन्होंने कि तेरी अगर आवाज न होती बुझ जाती जीवन की ज्योति, तेरे सच्चे सुर हैं ऐसे जैसे सूरज चांद सितारे, क्या क्या तूने गीत हैं गाए, सुर जब लागे मन झुक जाए, तुमको सुनकर जी उठते हैं हम जैसे दुख दर्द के मारे, तेरे मधुर गीतों के सहारे बीते हैं दिन रैन हमारे। एक इनकलाबी शायर को मोहब्बत में डुबो दे तो वो आवाज कैसी होगी अंदाजा लगाइए आप। अच्छा एक और बात बताइए, किसी आवाज की मोहब्बत में आप कितनी देर तक रह सकते हैं? घंटा, दो घंटा, दिन भर, महीनों? इस आवाज से आप कब तक प्यार कर सकते हैं जरा सुनिए।

लेकिन किसी आवाज में आप बरसों और सदियों तक डूबे रह सकें और कभी ये ना कह सकें कि किस लिए मैंने प्यार किया, दिल को यूं ही बेकरार किया, वो आवाज लता दीदी की है। वो आवाज ही नहीं बल्कि आवाज की दुनिया की एक ऐसी घटना है जिनके होने से गायन सिर्फ मठ मंदिरों, हवेलियों और नाच घरों तक ही सीमित नहीं रहकर एक चाय वाले की गुमटी या बाल काटने वाले की दुकान में भी अपने पंख फैला सकता है। आज हम अपने शो में याद कर रहे हैं लता मंगेशकर जी को। लता जी उन शख्सियतों में से एक हैं जिनके बारे में ये तय करना बड़ा मुश्किल है कि वो हमारा अतीत है, वर्तमान है या भविष्य। अगर हमारा देश एक शरीर है तो वो उसकी धड़कन और सांस है जो कभी पुरानी नहीं होती। जैसे हर आने वाली सांस अपने आप में नई और मुकम्मल है, वैसे ही लता जी की आवाज है। उन्हें हम आते जाते चलते फिरते दिन में एक बार तो कहीं ना कहीं सुन ही लेते हैं, कभी रेडियो पर या कभी कहीं और। आज उनकी यादें होंगी हमारे साथ। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर वक्त है आज के पहले म्यूजिकल ब्रेक का। आप इसमें आनंद लीजिए उनके गाए बेहतरीन उमदा गानों का और लौट कर आइए, ये यादों का सफर जारी रहेगा। लेजेंड सुन रहे हैं आप समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।

0: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक। एक कहानी, एक लड़की की कहानी जो अपनी अर्ली ट्वेंटीज में है और वो सुबह सुबह घर से निकलती है, रात तक जी तोड़ मेहनत करती है, काम करती है और रात को बिस्तर पर गिरते ही थक कर चूर होकर सो जाती है। उसको सपना आता है कि वो चलते चलते समंदर के किनारे एक काले पत्थरों से बने मंदिर में पहुंच जाती है। वो मूर्ति की तरफ ध्यान नहीं देती, मंदिर का पिछला दरवाजा खोलकर देखती है। बहुत सारे कदमों के निशान हैं, बहुत सारी सीढ़ियां बनी हैं। वो कदमों के निशान खो जाते हैं पानी में। वो सीढ़ियों पर बैठती है और समंदर की लहरें उसके पैरों को छूकर चली जाती हैं। ये सपना हर रात आता है। वो ये सपना अपनी मां को सुनाती है। मां अपनी बेटी का माथा चूमकर कहती है, भगवान का आशीर्वाद है, तुम खूब नाम कमाओ। और नाम सुरीले स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया गया, लता मंगेशकर। एक ऐसी चाशनी सी आवाज जिसकी मिठास में आप डूबे हुए हैं और आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप बहुत सोख चुके हैं उस आवाज को, यानी संतृप्त हो गए हैं, सैचुरेट हो गए हैं। लता दीदी 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मी। उनके पिता थे दीनानाथ मंगेशकर, जो खुद शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े प्रशंसक थे, पर हां फिल्म संगीत के वो कुछ खिलाफ थे। बहरहाल लता दीदी की आवाज इतनी संजीदा थी, मगर बचपन में तो लता जी भी हर बच्चे की तरह से चंचल थी, शैतान थी। एक दफा हुआ ये कि एक बार एक दुकानदार ने उनके घर के नौकर को सिक्का नकली बताकर खोटा सिक्का है कहकर सामान देने से मना कर दिया। तब नन्ही लता जी ने वो पैसे नौकर से लिए और बड़ी चालाकी से उसी दुकान से उसी पैसे से सामान खरीद लाई। न जाने कैसे वो नकली सिक्का चलाया होगा उन्होंने, पर चला दिया। लेकिन उनके फादर इससे बहुत नाखुश हो गए। उन्होंने तब अपनी बेटी को जीवन की एक सीख दी, जिसे ताउम्र तक उन्होंने माना, निभाया। क्या थी वो सीख, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हैं समर के साथ, लता जी को कर रहे हैं आज हम याद, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। कीप लिसनिंग।

0: don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो, या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ,
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: Crushable nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana, aur bhi bahut sare wholesome healthy options.
2: GG Mart, your personal grocer.

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: बचपन में लता दीदी बड़ी चालाकी से खोटा सिक्का चलाकर बाजार से सौदा ले आई, ये मैं आपको बता चुका हूँ। वेलकम बैक, मैं हूँ समर रेडियो 24/7 लाइव पर। आपको अब बता रहा हूँ कि उनके पिताजी इससे बहुत नाखुश हुए और उन्होंने लता दीदी को बुलाया, उन्हें नया और खरा सिक्का दिया और कहा कि वो जाएं उसी दुकानदार के पास और उसको लौटा कर आए और अपनी गलती के लिए माफी भी मांगे। ये सीख, ये संस्कार लता दीदी के साथ हमेशा साथ रहे। ये बात अलग है कि पिता जब वो बहुत छोटी थी तभी साथ छोड़ गए। विनायक दामोदर, जो उनके पिता के दोस्त और नवयुग चित्रपट कंपनी के मालिक थे, उन्होंने परिवार को संभाला और लता को अपना करियर शुरू करने में मदद की। और ऐसे छोटी सी लता ने 1942 में एक मराठी फिल्म में अपना पहला गाना गाया। हालांकि आखिरी वक्त पर उन्हें ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन सुनों की साम्राज्ञी का सफर तो शुरू हो चुका था। अब बाकी था वो जो नियति ने उनके लिए तय कर रखा था। लता दीदी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि बचपन में वो गाने से दूर भागती थी। जब उनको सिखाने की शुरुआत हुई तब वो गाना सीखने से बचने के लिए कई तरह के बहाने बनाती थी, कभी सिर दर्द तो कभी पेट दर्द का बहाना करती। और इसके बाद तो सब इतिहास ही है। शुरुआत संघर्ष से हुई, घर भर की जिम्मेदारी संभालने से हुई, मेहनत से हुई, लेकिन उसी ने लता को लता मंगेशकर बना दिया। सोना जितना तपा उतना निखरा। वो दिन भर एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो जाती हैं। हालांकि उन दिनों बॉम्बे में ज्यादा स्टूडियो थे नहीं, तारदेव स्टूडियो में सबसे ज्यादा रिकॉर्डिंग हुआ करती थी। वो इतना हार्ड वर्क करती थी कि कभी कभी तो एक दिन में 6-7 गाने रिकॉर्ड करती। महल फिल्म का उनका गाया गाना आएगा आने वाला ने उनको फ्रंट फुट पर ला दिया। अब तक लोग सिर्फ शमशाद बेगम, नूर जहां, इवन उमा देवी को भी जानते थे। लता दीदी फ्रेश और ट्रेंड आवाज थी। लता दीदी की आवाज ऐसी बन गई है जैसे ये आवाज कोई स्पेसिमेन है बायोलॉजी लैब में रखा हुआ, जो सैकड़ों सालों तक सुरक्षित रह सकता है बिना किसी बदलाव के। तो इसी आवाज की चाशनी में डूबे ये गाने आप तक आ रहे हैं और उसके बाद मैं इसी आवाज की कहानी लेकर लौट आऊंगा। लता मंगेशकर हैं आज के हमारे लेजेंड, जिनकी यादों में हम डूबे हुए हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।

0: कुछ पुरानी धुनें, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
0: कोई आवाज, कोई साज। सिनेमा की दुनिया के किस्से, रुलाते हंसाते उदासी भरे खिलखिलाते किस्से, समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।

0: सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से।
1: 1942 में एक मराठी फिल्म में अपना पहला गाना गाया, हालांकि आखिरी वक्त पर उन्हें ड्रॉप कर दिया गया ब्रेक पर जाने से पहले। मैं आपको ये बता रहा था, वेलकम बैक, मैं हूं समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लता जी को आज हम याद कर रहे हैं अपने शो लेजेंड्स में। इसके बाद फिर विनायक दामोदर साहब ने ही एक और मराठी फिल्म में छोटा सा काम दिलवा दिया, एक्टिंग। फिर लगभग एक साल बाद एक और मराठी फिल्म में पहला हिंदी गाना गाया, जिसके बोल थे, माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू। कुछ समय बाद मास्टर विनायक की कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई बना तो वो मुंबई आ गई। यहाँ उस्ताद अमानत अली खान, अमानत खान देवास वाले पंडित तुलसीदास शर्मा से उन्होंने सीखा। पंडित तुलसीदास शर्मा बड़े गुलाम अली खान साहब के शिष्य थे और उन्हें बड़े गुलाम अली खान साहब ने लता जी के बारे में कहा था कि कमबख्त कभी बेसुरी नहीं होती, और यही हमेशा सुर में रहने वाले सुर उन्होंने दिए फिल्म आपकी सेवा, बड़ी माँ और सुभद्रा आदि में। इसी दौरान उनकी मुलाकात वसंत देसाई साहब से हुई और ये उनके करियर का शुरुआती दौर था। विनायक जी का देहांत हो चुका था, विनायक दामोदर जो उनको अब तक उनके परिवार को और उनको पाल पोस रहे थे, उनका ध्यान रख रहे थे। इसके बाद म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम हैदर ने विनायक के बाद लता को मेंटोर करने का जिम्मा उठाया। मास्टर गुलाम हैदर ने उनको सांस लेने की जगह बताई कि गाने में सांस कहाँ लेना है, जहाँ सम आता है वहां से गाने को उठाना होता है, ठीक वहीं सांस ले लो। लता दीदी कहती थी कि नौशाद साहब ने उनको उच्चारण सिखाया, उनका तरीका एकदम अलग था। वो गाने को कागज पर लिखवाते थे उनसे, फिर पढ़कर सुनाने को कहते। लता दीदी सुनाती और वो बता देते कि कहाँ क्या सुधारना है और बस फिर हो जाता। उनके शुरुआती दौर के म्यूजिक डायरेक्टर अनिल विश्वास जी ने उन्हें सिखाया कि जब भी सांस लेनी हो माइक से मुंह फेर लो, सांस ऐसे लो कि किसी को मालूम न पड़े गाने में, वो सुनाई न दे, या लाइन खत्म हो वहां सांस ले लो। मगर धीरे धीरे लता दीदी ने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि किसी को पता नहीं पड़ता था कि उन्होंने कहां सांस ली, सुरों को खबर भी नहीं लगती थी सांस लेने की। अच्छा, कोई कितना भी बड़ा सिंगर हो जाए या हस्ती हो जाए, सबसे बड़ी चीज होती है लर्निंग। अगर वो नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। लता दीदी ने हमेशा ही किसी न किसी से सीखने की कोशिश की, या यूं कहूं कि हर किसी से सीखने की कोशिश की, और इस तरह सीखने सिखाने का ग्राफ भी बढ़ता रहा। लता दीदी की सफलता का ये ग्राफ भी बढ़ता रहा उनके सीखने के साथ साथ। इस ग्राफ की करेंगे बात, लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद।
2: अच्छा तो हम चलते हैं।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक। आज हम हमारे शो में याद कर रहे हैं लता मंगेशकर जी को। हाँ जी, लता दीदी, जिनके पास लगता है सुरों का कोई ऐसा खजाना है जो कभी खत्म होने वाला ही नहीं है। अगर लगता है कहीं संगीत आराधना है तो वो उसकी देवी हैं। ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से वही म्यूजेस हैं, रोमन माइथोलॉजी के हिसाब से वही मिनर्वा हैं, और इंडिया में वही संगीत की सरस्वती हैं, थीं और रहेंगी, और हमारे लिए लता दीदी। और आप सोचे, फिल्म मेकर शशधर मुखर्जी ने फिल्म शहीद के लिए लता दीदी की आवाज रिजेक्ट कर दी थी और कहा था कि आवाज बहुत पतली है इसकी। तब उस वक्त गुलाम हैदर साहब खफा हो गए थे और उन्होंने कहा था कि भविष्य में लोग लता के पैरों में गिरकर भीख मांगेंगे अपनी फिल्म में गाना गवाने के लिए, और ये सच साबित हुआ। इसके बाद गुलाम हैदर ने ही उन्हें सबसे बड़ा ब्रेक दिया फिल्म मजबूर में, और गाना था दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, मुझे कहीं का ना छोड़ा। और फिर इसके बाद तो उन्होंने सफलता के नए नए आयाम स्थापित किए। उन्होंने 30,000 से भी ज्यादा गाने गाए, न सिर्फ हिंदी मराठी में बल्कि सभी हिंदुस्तानी भाषाओं में गाने गाकर उन्होंने कीर्तिमान बनाया है। 1974 में लंदन में उन्होंने अपना पहला कॉन्सर्ट किया और उन्हें वहां मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट के तौर पर पेश किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गोल्ड डिस्क उन रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट्स को दी जाती है जिनकी रिकॉर्डिंग की सेल्स एक पर्टिकुलर नंबर से ज्यादा होती है। इसके अलावा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी उन्हें एक खास सम्मान से नवाजा। उनके नाम अवार्ड्स की तो देखिए एक लंबी फेहरिस्त है, 6 फिल्म फेयर अवार्ड, 3 नेशनल अवार्ड, 2 महाराष्ट्र सरकार के पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, स्क्रीन और फिल्म फेयर जी स्टारडस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बॉलीवुड का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के, और भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। ये तो जाने माने पुरस्कार है, और अगर सारे में शामिल करने बैठा तो एक शो में मैं शायद नाम भी ना ले पाऊं, इतने पुरस्कार उनके नाम पर है। लेकिन वो हमारे लिए एक जीता जागता पुरस्कार है, और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि जिसने भी लता जी को सुना वो एक बार सुनकर रोक नहीं पाया होगा अपने आप को। उसने फिर से सुना होगा, बार बार सुना होगा, उनके दूसरे गाने खोजे होंगे। ये जादू है लता दी का। आज उन्हें हम याद कर रहे हैं, उन्हीं की बातें कर रहे हैं, और ये बेहतरीन गाने भी हम लाए हैं जो उनकी यादों में चार चांद लगा रहे हैं। इन्हें सुनिए, वापस आइए, समर के साथ रहिए। लेजेंड सुन रहे हैं आप रेडियो 24/7 लाइव पर। कीप लिसनिंग।

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: Healthy khao, protein khao. Healthy khao, protein khao.
2: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Krishival premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September.
3: Sham ki chai ho, office ka break ho, ya late night binge watching.
1: Healthy khao, protein khao. Healthy khao, protein khao.
2: Healthy munching ka perfect partner. Aap sirf ek click door.
4: GG.
2: Krishival nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana, or भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
4: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
5: सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral, and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday, subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Pen.
6: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 10
7: का 20. अरे अरे, अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा?
5: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है।
8: टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
5: Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: हाँ जी, वेलकम बैक। सुर कोकिला लता मंगेशकर के सुरों और आवाज से आज हम तर बतर हो रहे हैं, पूरी तरह से सराबोर। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि बहुत प्यार से मधुर बात करने वाली दीदी का गुस्सा भी कम नहीं है? और गुस्सा दिखाने का उनका एक ही तरीका था, वो उसके साथ काम करने से मना कर देती थी जिनसे वो गुस्सा हो जाती थी। उन्होंने

नैयर साहब के साथ गाने नहीं गाए। उसके बाद से जब ओपी नैयर ने कहा कि मेरे गाने सिर्फ गीता दत्त गा सकती हैं, आशा भोसले, हालांकि लता जी एक बड़ी सिंगर हैं, बस लता दीदी ने सोच लिया कि अगर यही बात है तो फिर मैं क्यों गाऊं गाना उनके साथ। सही भी है भाई, एक आर्टिस्ट में अपनी आर्ट को लेकर यह बात होनी चाहिए कि कोई उसका अपमान क्यों करते। अच्छा यही नहीं, उनकी एसडी बर्मन साहब के साथ भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। एक या दो नहीं बल्कि पूरे 8 साल तक उन्होंने गाना नहीं गाया। बात इतनी सी थी कि कोई गाना लता दीदी ने गाया, बर्मन साहब को लगा कि कैरेक्टर के हिसाब से ठीक नहीं है, दोबारा गाना होगा। लता दीदी को बुलवा भेजा तो वो बोली मैं फिर से कर दूंगी, फिर से रिकॉर्ड कर दिया। फिर भी बर्मन दा को जचा नहीं। फिर उन्होंने किसी के साथ लता दीदी को बुलवा भेजा। लता दीदी उन दोनों बहुत बिजी थी तो उन्होंने कहा कि मैं जैसे ही फ्री हो जाती हूँ मैं आ जाऊंगी। अब बर्मन दा ने लता दीदी के साथ काम करने से मना कर दिया। लता दीदी ने भी कहा ठीक है, आप मुझसे गाना नहीं गवाना चाहते तो कोई बात नहीं। बस फिर पंचमदा की समझाइश पर बात बनी। पर इस सब में 8 साल बीत गए और जो 8 साल बाद लता दीदी ने गाना गाया वो था एक लाज रोके पैया एक मोह खींचे बैया मोरा गोरा रंग ले ले मुए शाम रंग दे दे, फिल्म बंदनी का। राज कपूर साहब के साथ भी लता दीदी का कुछ ऐसा इशू रहा। वहां रॉयल्टी को लेकर बात थी। राज कपूर साहब ने कह दिया था कि हम किसी को रॉयल्टी नहीं देते। लता दीदी ने कहा कि लेकिन मैं तो लेती हूँ, बाकी सब प्रोड्यूसर्स देते हैं, आप भी दीजिए। राज कपूर साहब बोले लेकिन मैं राज कपूर हूँ। तो लता दीदी भी अटक गई, बोली मैं भी लता मंगेशकर हूँ। बस वहीं पर दोनों के बीच दीवार खिंच गई। लेकिन इस दीवार को राज कपूर को ही गिराना पड़ा क्योंकि वो जानते थे लता दीदी बिन गुजारा संभव नहीं। सच में वो तो हमारा भी रूटीन है, कहीं ना कहीं आते जाते उनका गाना सुन ही लेते हैं हम। फिलहाल तो आप सुनिए यहाँ पर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लता जी को कर रहे हैं आज हम याद। मैं हूँ समर। कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज पर आकर जरूर कहें। या लता दीदी की आवाज में आपकी पसंद का कोई गाना हमें प्ले करना है तो बताइएगा, वहां लिखकर हम जरूर चलाएंगे।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा इट्स टाइम फॉर सिंगापुर। गुजराती सोसाइटी प्रेजेंट्स सिंगापुर्स ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि, 16th, 17th एंड 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.

0: सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: यह ख्याल भी अपने आप में अटपटा लगता है कि लता मंगेशकर कभी बच्ची भी थी। लता दीदी किसी व्यक्तित्व से बढ़कर सिर्फ एक दिव्य आवाज लगती है जो सदियों से आ रही है और जन्म मृत्यु की सीमा के पार सदियों तक जाएगी। लता दीदी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो नूरजहां से बहुत मुतासिर थी। जब वो गाने के लिए आई थी, जब इंडस्ट्री में कदम रख रही थी, तो नूरजहां जी को रिकॉर्ड बजा बजा कर बहुत ध्यान से सुनते थे। तो उन्होंने देखा कि उस समय फिल्मों में ज्यादातर लोग मोहब्बत कहते थे और थोड़ा जोर देकर कहते थे। नूरजहां जी इसी शब्द को बहुत हल्के से उठाती और मोहब्बत कहती थी, तो इसे उन्होंने भी मोहब्बत कहना शुरू किया और बाद में देखा कि ज्यादातर सिंगर फिर मोहब्बत ही गाने लगे। इसके अलावा लता दीदी मधुबाला जी को भी बहुत पसंद करती थी। उनके करियर के शुरुआती दौर में मधुबाला ने उनका साथ दिया। मधुबाला ही अकेली ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने बाकायदा अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखवाना शुरू किया कि उनका प्लेबैक लता मंगेशकर ही दिया करेंगी। इस बात से सेटिस्फाई होकर ही वो फिल्में साइन करती थी। बाद में ये काम कुछ और लोगों ने भी शुरू किया। लता दीदी अक्सर कहा करती थी कि अगर मधुबाला ने ऐसा कुछ न किया होता तो उन्हें इतनी आसानी से उनके सारे गीत न मिले होते। ये भी सच है कि मोहब्बत को मोहब्बत से रहा होती है। वो खुद इतनी अच्छी थी, सब उनके साथ ठीक से रहे, लेकिन अपने हक के लिए उन्होंने लड़ाइयां भी लड़ी, चाहे प्रोड्यूसर्स से हो या फिल्म के डायरेक्टर से, अपने साथी गायक से हो या संगीतकार से, उन्होंने अपना स्टैंड लिया हमेशा। तो चलिए फिलहाल जो गाने स्टैंड बाय हैं इन्हें भी सुन लेते हैं। ये लता जी की आवाज से सजे गाने आप तक आ रहे हैं रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर। सुनते रहिए।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे

0: कुछ पुरानी धुनें, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
0: कोई आवाज, कोई साज। सिनेमा की दुनिया के किस्से रुलाते, हंसाते, उदासी भरे, खिलखिलाते किस्से समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।

0: सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से।
1: यूं तो लता दीदी एक ऐसा नाम है जिनसे हम में से कोई भी अनजान नहीं है। उनकी आवाज का मुरीद कोई ना कोई कहीं ना कहीं रहा ही है। लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनके बारे में जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि लता दीदी ने मराठी फिल्मों के लिए संगीत निर्देशन भी किया था? म्यूजिक डायरेक्टर थी वो, और एज अ म्यूजिशियन उनका नाम ओरिजिनल नहीं था, फिल्म में उनका नाम नकली रखा गया था। ये शायद लेट 60s की बात है जब मराठी फिल्मों के बड़े निर्माता निर्देशक भालजी पेंढारकर शिवाजी महाराज की ऐतिहासिक कथा पर मोहित्यांची मंजुला नाम की एक फिल्म बना रहे थे, तो उन्होंने अपनी पसंद के संगीत निर्देशकों से संपर्क किया, मगर उस वक्त सभी कहीं ना कहीं बिजी थे, व्यस्त थे। भालजी पेंढारकर को जल्दी थी और वो इस फिल्म का प्रोडक्शन संगीत निर्देशकों के खाली होने तक रोक नहीं सकते थे। तो ऐसे में लता मंगेशकर जी ने यह सुझाव दिया कि अगर भालजी बाबा चाहें तो वो संगीत बनाने में सहयोग कर सकती हैं। डायरेक्टर साहब ने यह बात सिरे से इसलिए खारिज कर दी थी कि उस जमाने में उनका एज अ सिंगर बड़ा नाम हो चुका था और उन्हें डर था कि कहीं फिल्म के संगीत ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो नाहक ही लता मंगेशकर का नाम खराब हो जाएगा। अब एक बार फिर से लता मंगेशकर ने उन्हें सुझाव दिया कि यदि भालजी बाबा चाहें तो वो स्यूडो नाम से संगीत दे सकती हैं। ये बात उनको कुछ जम सी गई तो इस तरह से एक नाम तय हुआ, जटाशंकर। लेकिन ये नाम लता दीदी को जमा नहीं। फिर उन्होंने क्या रखा नाम, मैं बताता हूं आपको एक ब्रेक के बाद।

0: लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक, मैं हूं समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर कर रहा हूं आपका स्वागत। आज हम लता दी को याद कर रहे हैं लेजेंड्स में। लता दीदी ने मराठी फिल्मों में म्यूजिक देना चाहा, पर वहां अगर लता दीदी अपने नाम से वो करती सबको मालूम हो जाता, लिहाजा उनके लिए नाम चुना गया जटाशंकर। लेकिन लता दीदी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने एक मराठी पोएट रामदास स्वामी की कविता से निकालकर एक शब्द चुना, आनंद घन। इसका अर्थ उनको भा गया, आनंद के बादल। लता दीदी बेमिसाल हुनर, अतुलनीय, इनक्रेडिबल। अपने पूरे करियर में वो बहुत व्यस्त रही, एक के बाद एक उनका गाना शेड्यूल रहता था। कई दफा जब लता जी को कोई गाना गाना होता था और वो उस दिन अवेलेबल नहीं होती थी तो किसी और से गाने को गवा लेते थे, डमी ट्रैक बनवा लेते थे। फिल्म में गाना शूट हो जाता था, आर्टिस्ट लिपसिंक कर देता था, लता जी उन्हीं नोट्स पर वैसे ही गा लेती थी। लेकिन सच कहें तो कोई कितनी भी डमी कर ले, लता जी का कोई मुकाबला नहीं था। वैसे क्या मैंने आपको बताया कि वो एक बेहतरीन फोटोग्राफर भी थी, उनका फोटोग्राफी की तरफ बड़ा ही रुझान था। वो एक दफा एक फिल्म की शूटिंग पर गई, वहां उन्होंने कैमरे से एक नदी किनारे खड़े शख्स का फोटो खींचा। उन्होंने फिल्म एडिटर को ये तस्वीर दिखाई, वो भी इसे देखकर बड़े खुश हुए। फिर ये हुआ कि लता दीदी ने खरीदा अपना पहला कैमरा, पूरे 1200 रुपए का कैमरा। लेकिन लता दीदी ने डिजिटल कैमरा आने के बाद फोटोज लेना बंद कर दिया था, उनके अनुसार ये कोई फोटोग्राफी नहीं थी। लता दीदी की और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है, वक्त बहुत कम है, कितनी कर पाएंगे कितनी रह जाएंगी हमें नहीं पता, लेकिन बातें होती रहेंगी क्योंकि वो ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में जितना कहा जाए, जितना लिखा जाए, जितना सुनाया जाए कम है। मैं बस यूं गया और यूं आया। आज की आखिरी मुलाकात करते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात है।

0: नाचने का मन है,
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
3: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा इट्स टाइम फॉर सिंगापुर। गुजराती सोसाइटी प्रेजेंट्स सिंगापुर्स ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Musti. Book now at sgs.org.sg/navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.

0: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूँ लता दीदी की यादों से सजे इस बेहतरीन शो में, नाम है जिसका लेजेंड्स। लता दीदी को खाना पकाने का बड़ा शौक था। जब भी कोई अच्छी रेसिपी मिलती तो वो सीख लेती थी। क्रिकेट मैच देखने का बचपन से बड़ा शौक। वो जब छोटी थी और उनके बाबा जिंदा थे, उनकी थिएटर कंपनी की एक क्रिकेट टीम थी आर्टिस्ट की और वर्कर्स की, और मैच हुआ करते थे आपस में। तब तो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही होता था। जब भी मैच होते लता दीदी के परिवार के लिए वो पिकनिक से कम नहीं होता था। तो उस दौरान उनके घर आते जाते रहते थे पूर्व क्रिकेटर विजय सैमुअल हजारे, यानी क्रिकेट जो था लता जी का बहुत फेवरेट गेम था, बहुत करीब था उनके, और वो घर पर ही रेडियो पर कमेंट्री सुन लिया करती थी, एंजॉय करती थी। लता दीदी जिनकी आवाज से चेहरे बनते हैं, ढेरों चेहरे, जो अपनी पहचान को किसी रंग रूप या नैन नक्शे से नहीं बल्कि सुर और रागिनी के आईने में देखने से आकार पाते हैं। बचपन में रेडियो या ग्रामोफोन पर सुनते हुए किसी प्रेम गीत या किसी डांस सॉन्ग में हमने कभी ये महसूस ही नहीं किया कि इस बक्से के भीतर कुछ निराले ढंग से मधुवाला या वहीदा रहमान पियानो और सितार की धुन पर थिरक रही हैं, बल्कि हमने उन्हें ही नाम से जाना। लता गा रही हैं। लता हमेशा हमारे दिलों में गाती रहेंगी, दिल के सारे चैम्बर्स में रक्त के साथ बहती रहेंगी। 29 दिन तक मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में मौत से लड़ने के बाद 6 फरवरी 2022 को वो मनहूस दिन आया जब भारत का सुर अनंत में विलीन हो गया और बस ये कह उठा, तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए। यहीं कहीं है पर वो हमारे आसपास, किसी के मोबाइल पर बज उठेंगे कभी भी, किसी के ईयरफोन से धुन बनकर कानों से लेकर रग रग में समा जाएंगे। वो कहां जाएंगे? वो हमारे दिल में, हमारी धड़कन में, हमारी सांसों में हैं। वो कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। उनको हमारी ओर से शत शत नमन।

रेगिस्तान रे रेत रे हो रे मारी।

0: रात अकेली है।
1: रात अकेली है तो क्या,

0: बात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है। जोश में रहो।
1: Yeah. Wanna feel that? Come on, girl.

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो।

honestly, Jay.

है घर से, जल्दी निकल जाती है घर से, देर से वापस आती है, पत्नी मुझे सताती है।

तक राग अलापा, मुझ पे न आई जवानी कभी, उस पे न आया बुढ़ापा। ये 60 बरस की बुढ़िया, ये 60 बरस की बुढ़िया, लेकिन फिल्मी गाने गाती है।

भाई चौकीदार बना के मुझको सारी रात जगाती है, पत्नी मुझे सताती है, मेरी पत्नी मुझे सताती है।

अभी मौसमों का बदलना बाकी है, ओ साथी रे थोड़ा ठहर जा, कुछ दूर सा

0: Går det med?
1: जागो जागो जागो, सुबह हो गई, जल्दी से ले लो चाय ठंडी।

0: जाग जा।
1: चल फोट भाग जा, मेरे पीछे क्यों पड़ा है, वो भी तो सोया पड़ा है।
0: ए, ए विलन बादशाह, ये क्या करता है?
1: अरे का, का, का, सरत करता है, देखता नहीं क्या तू?

0: सारा दिन झगड़ा ही करोगे क्या है?
1: अरे साला, अभी तक लड़े हुए तुम लोग?
2: अरे छोटू, अरे तेरी तो
1: अपन को हाथ नहीं लगाना।

कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते।

सोला बन के शोला आग लगाने आ गई, जैसे देखा वो ये बोला होश उड़ाने आ गई होश उड़ाने।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

0: की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 live fan. आप लोग भी सभी ना कमाल के ही हो यार। मेरे आने से पहले, मतलब मेरी आवाज यहाँ पे आने से पहले, ये जो आपके मैसेजेस आ जाते हैं, लाइक एवरी सिंगल वन ऑफ यू, दिल जीत जाते हो यार। आई फील, मतलब आंखें भर आई मेरी सुबह सुबह। क्या करते हो यार। सो गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती 24/7 पर आप सभी का स्वागत है। मैं अंतरा यहाँ पर बिल्कुल ऑन टाइम आपके साथ जुड़ चुकी है। इट्स अ ब्यूटीफुल ट्यूसडे मॉर्निंग। यू गाइस आर द वन हु मेक इट एब्सोल्युटली टोटली वर्थ इट। 7 बजकर हो चुके हैं यहाँ पर 8 मिनट। बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ हमने यहाँ पर शुरुआत की। और आज तो बहुत वैसे भी स्पेशल दिन है। आज है वर्ल्ड हार्ट डे। टेक्निकली दिस डे इज अबाउट क्रिएटिंग अवेयरनेस अराउंड हार्ट हेल्थ, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, प्रिवेंशन, हेल्दियर लाइफस्टाइल, सब कुछ करना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिकली रिमाइंडिंग अस टू टेक केयर ऑफ दैट वन ऑर्गन जो लिटरली बिना ब्रेक लिए हमारे लिए काम करता रहता है। बट पता है, जब भी हम ये दिल की या हार्ट की बात करते हैं, समहाउ बात सिर्फ हेल्थ तक रह ही नहीं पाती है। बिकॉज दिल बड़ी अजीब सी चीज है यार। साइंस के लिए इट्स एन ऑर्गन, बट हमारे लिए दिल टूटता है, दिल लगता है, दिल मानता है, दिल नहीं भी मानता है। कभी दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और कभी वही दिल कहता है बस आज मुझसे ना हो पाएगा। और बॉलीवुड ने तो दिल को एक पूरी पर्सनालिटी ही दे रखी है। दिल है तो फिर दर्द होगा, दर्द है तो फिर दिल भी होगा, मौसम गुजरते रहते। वाह वाह, what a beautiful thought actually. Maybe having a heart means exactly that. You will love, you will hurt, you will get disappointed, you will heal, you will get excited about something completely silly. Kabhi kisi ek baat pe dil lag jayega, kabhi kisi ek chota sa gesture pura din bana dega. That's the deal with having dil. Did I do that right? Okay. So this World Heart Day, take care of your heart physically. That is very, very important. क्योंकि जिम में मेरे को ये कहा जाता है, बेटा पंप जितना तेज धड़केगा उतना ही ज्यादा ब्लड फ्लो ऊपर नीचे होगा, लाइक दैट साइंस। सो मूव अ लिटल मोर, ईट बेटर, स्लीप बेटर, गेट योर हेल्थ चेक्स डन रेगुलरली, लिसन टू योर बॉडी। बट साथ में इस दिल का भी ख्याल रखें, हर बात उसके अंदर मत रखिए। थोड़ा हंसिए, थोड़ा माफ करिए, कुछ लोगों को जाने दीजिए और कुछ लोगों को जोर से पकड़ के रखिए, जैसे मैंने आपको पकड़ के यहाँ पर रखा है। बिकॉज हेल्थी हार्ट सिर्फ रिपोर्ट्स में नहीं, मे भी थोड़ा सा लाइफ में भी होना चाहिए। मैं अंतरा, दिस इज मस्ती का मंत्रा। बस दिल है तो धड़केगा, दिल है तो महसूस भी करेगा, बस उसका ख्याल रखिए अंदर से भी एंड बाहर से भी। हैप्पी वर्ल्ड हार्ट डे। एंड इसी बात पे हमारा दिल होगा थोड़ा सा शायराना विद सम अदर सॉन्ग्स एज वेल, एंड आई विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग।
1: दिल तो बच्चा है।
2: व्हाट बच्चा, अब प्लीज दिल को ब्लेम मत करो अपनी हरकतों के लिए। हैप्पी वर्ल्ड हार्ट डे फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxalam India The Family Expo is back with its grand 43rd edition celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition standya, cultural entertainment and family fun. 16th se 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo mein. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxalam India The Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxalamindia.com. This Navratri season, skip the treadmill. Because the best kind of cardio comes with Dandiya Sticks. We Indus presents Bollywood Dandiya Night. Where the colorful festive vibes meet Bollywood ka music, energetic dancing, good Indian food and exciting surprises.
1: Suat.
0: Join Kariyan ka celebration on Saturday, 10th October, 6 p.m. onwards at Khalsa Association Building, Singapore. Tickets at $30 per adult and $15 per child with group discounts available. Call 9022-1210. Buy your tickets now. Call or WhatsApp 9022-1210.
2: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स, मस्ती का मंत्र विद आरजे अंत्रा।
3: मेरा लेवल नेक्स्ट पहुंच चुका है। सुबह के 4 जहां पे बज रहे हैं भारतवर्ष में, वहां से मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है। ओ माय गॉड, इट्स सम डिफरेंट ट्यूसडे ऑल टुगेदर। 7 बजकर हो चुके हैं, यहां पर 20 मिनट रेडियो मस्ती 24/7 अंतराब के साथ एंड यहां पर चल रहा है ऑफकोर्स मस्ती का मंत्र। चलिए खबरों का सिलसिला फिलहाल यहां पर शुरू करते हैं। देखो, सबको अपना अपना काम कर, अपनी अपनी दुकान जो है खोलकर काम शुरू कर देना चाहिए, यही कहता है अडल्टहुड हमारा। सो वेल, ये जो एक बड़ा सा स्पोर्टिंग मोमेंट जो सिंगापुर मना रहा है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। हमारे लो क्यान यू जो है, ही हैज मेड हिस्ट्री एट एशियन गेम्स जो कि चल रहा है। 29 ईयर ओल्ड हमारे ये जो है, ही बिकेम द फर्स्ट सिंगापुरियन बैडमिंटन प्लेयर एवर टू रीच एन एशियन गेम्स का फाइनल, एंड दैट मीन्स सिंगापुर इज नाउ गारंटीड एटलीस्ट अ सिल्वर मेडल इन मेन्स सिंगल्स। एंड सेमीफाइनल बिल्कुल इजी नहीं था। लो जो है फेस्ड साउथ कोरिया के यू थे बिन, एंड हु हिमसेल्फ हैज बीन हैविंग एन इनक्रेडिबल जायंट किलिंग रन। द मैच वेंट टू 3 गेम्स। लो जो है टुक द फर्स्ट 21-19 में, एंड देन यू फॉट बैक 21-19, एंड देन इन डिसाइडिंग गेम लो जो है रियली टुक कंट्रोल 21-12 से, वो जीत गए। बट यू नो वॉट मेक्स दिस रन इवन मोर इम्प्रेसिव, इसी टूर्नामेंट में अर्लियर लो डिफीटेड इंडिया के लक्ष्य सेन, देन मलेशिया के जस्टिन हो, एंड इन द क्वार्टर फाइनल गेम द मैसिव वन, ही beat world number one Jonathan Christie, ending a match, you know, 10 match ka losing streak against him. And ye bhi hai ki before these games Singapore had only won one Asian Games ka badminton medal, a women's team bronze, and that too way back in 2006. And Lo himself jo hai at his previous Asian Games ka appearance 3 years ago had gone home without a win, and aaj ki date mein he is going to play for gold, and what a turnaround story it is. Bhai hai na, at the end of the day hum log jo hamare parents hamesha kaha karte the, beta it's all about participation, hum chahte hai ki tum participate karo, jeetna is वेरी सेकेंडरी, अगर जीत के आ गए तो बहुत बढ़िया। देखो सिल्वर तो वो लेकर आ ही रहा है, बट अगर गोल्ड भी आ जाए तो मतलब शानदार हो जाएगी बात। सो सबकी नजरें फिलहाल वहां पर। ऑल द बेस्ट टू लो क्यान यू, एंड कम ऑन सिंगापुर, यू कैन डू इट। वी आर द वंस, आई थिंक वी आर चीयरिंग फॉर इंडिया ऑल्सो, वी आर चीयरिंग फॉर सिंगापुर ऑल्सो, एंड मे द बेस्ट वंस विन। एंड मे एक्चुअली एक वैसे वाली बात कीजिए जो हमारे प्रिंसिपल्स जो है स्पीचेस में कहते हैं, हमारे लिए तो सभी विनर्स हैं। गुड मॉर्निंग।

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: It's 7:32 by the studio clock, Radio Mosti 24/7 पर। Time for traffic update इस घंटे का। बिल्कुल भारी भरकम traffic everywhere। Heavy traffic आपको इस वक्त मिलेगा on BK

0: This Navratri season, skip the treadmill. Because the best kind of cardio comes with Dandiya Sticks. We Indus presents Bollywood Dandiya Night. Where the colorful festive vibes meet Bollywood ka music, energetic dancing, good Indian food and exciting surprises. Join kariye inka celebration on Saturday, 10th October, 6 p.m. onwards at Khalsa Association Building, Singapore. Tickets at $30 per adult and $15 per child with group discounts available. Call 9022-1210. Buy your tickets now. Call or WhatsApp 9022-1210.
1: Healthy खाओ, protein खाओ. Healthy खाओ, protein खाओ.
2: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Krishival premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट binge watching.
1: Healthy खाओ, protein खाओ. Healthy खाओ, protein खाओ.
2: Healthy munching का perfect partner. आप सिर्फ एक क्लिक दूर.
3: जीजी.
2: Krishival nuts only on GGMartOnline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana और भी बहुत सारे wholesome healthy options.
3: GGMart, your personal grocer.
4: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
5: वेलकम बैक. 7:37 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में. रेडियो मस्ती 24/7 आपके साथ. यहाँ पे चल रहा है मस्ती का मंत्रा. क्या क्या चीजें होती रहती है भाई दुनिया भर में. ये जो अच्छा, आप सोचो आप एक कॉन्सर्ट में गए हो किसी एक स्टार के. बड़ा ही एक तो मुझे कॉन्सर्ट का और भी ज्यादा मुझे को टेकन फॉर ग्रांटेड बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको उसके टिकट्स लेने लेने में ही ऐसा लगता है आपने कोई जंग जीती हुई है. हाल ही में मैंने ऐसा एक जंग जीता एंड I was like, and I have been chasing for these tickets for so, so very long. But it's a war out there. It's called the ticketing war. Yeah, and it's crazy, crazy. So well, आप कॉन्सर्ट जाते हो, लेकिन कॉन्सर्ट में आपका जो सिंगर जो परफॉर्म करने वाले हैं वो हो जाते हैं लेट. लेट मतलब काफी काफी लेट. तो यूजुअली क्या होता है कि काफी

लोग वीडियोस बनाने शुरू कर देते हैं और काफी निंदा होनी शुरू हो जाती है एंड ऑल दोस थिंग्स हैपन. बट नो भाई, एक चाइनीज इंडी सिंगर, उनका कॉन्सर्ट था और वो 2 घंटा लेट आए कॉन्सर्ट पे, बट कॉन्सर्ट चलता रहा. हाउ एंड वाई? दैट्स वॉट इज गोइंग एब्सोल्यूटली वायरल एवरीवेयर. तो क्या है कि भाई, जब 2 घंटे ये हमारे स्टार सेलिब्रिटी लेट हुए, तो ऑर्गेनाइजर ने यही क्राउड में से एक यूजुअल रोजमर्रा के सिंगर को, इंडी सिंगर को अप्रोच किया और उसको बोला कि जब तक हमारे सिंगर, सेलिब्रिटी सिंगर नहीं आते, तुम आके क्यों नहीं अपना जो है. एंड सी, 2 चीजें हो सकती थी यहां पर. एक तो वो बोलता कि भाई मैं नहीं, ये नहीं, और दूसरा था कि इस बंदे ने देखा मौका. फॉर 2 गुड आवर्स दिस गाय kept on entertaining a crowd of 1,000 people, more than 1,000, like बहुत, like huge crowd को, till the time the celebrity artist was finally there. The video in itself is, oh my god. अब आप सोचो, आई थिंक उसने पहले 2 गाने तो जैसे तैसे गाए होंगे एंड उसके बाद इसको आने लगा होगा मजा. आई एम जस्ट सेइंग फ्रॉम द आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू कि ये तो सही है. और उसके बाद फिर एक जो होता है ना, देन यू गेट इन टू द फ्लो एंड देन योर पैशन फ्लोज एंड एंड इट्स जस्ट क्रेजी. या ऐसा भी होता है और ऐसे भी आप, यानी किस्मत जब पलटनी होती है और बननी होती है और कुछ होना होता है ना, इट टेक्स दैट वन मोमेंट एंड इट जस्ट हैपेंस विथ यू एंड आपका करियर. उसका भाई इंस्टाग्राम अकाउंट इज, इट्स जस्ट ब्रोकन. लोग उसको पागलों की तरह फॉलो कर रहे हैं कि यार कहाँ थे तुम आज तक, हमें पता क्यों नहीं था. बताइए, ऐसा भी होता है. गुड मॉर्निंग.

0: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxalam India The Family Expo is back with its grand 43rd edition celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition stanya, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October tak, Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo mein. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxalam India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxalamindia.com.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behen aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: हर ट्यूसडे एक नया ट्विस्ट, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा।
4: वेलकम बैक, 7:00 हो चुके हैं 50 मिनट सिंगापुर टाइम, रेडियो मस्ती 24/7 पर। मैं अंतरा यहाँ पर आपके साथ, एंड भाई धीरे धीरे करते हुए सब की दिनचर्या जिसको कहते हैं वो शुरू हो चुकी है, एंड पीपल फ्रॉम इंडिया जो है वो भी हमारे साथ यहाँ पर ट्यून्ड इन है, जुड़ चुके हैं। तभी मैंने स्पेसिफिकली कहा कि ये 7:50 जो है वो सिंगापुर टाइम के हिसाब से है। बट सिंगापुर की बात करें और आजकल हेज की बात ना करें, ये भी कैसे ही हो सकता है। सो एज ऑफ 7 AM this morning की अगर बात की जाए तो 24 hour का PSI was in unhealthy range again across all 5 regions of Singapore कहा जा रहा है। Central Singapore was the highest 155, followed by West 139, South 129 and East 128, North 101. Remember, anything from 101 to 200 is classified as unhealthy. कल evening तक picture was quite different. At 6 PM कल की date में 24 hour का PSI was still between 68 and 94 in the moderate range. Although इनका जो 1 hour का जो reading है, they were already elevated at 64 to 138. उसके बाद overnight air quality जो है deteriorate हुई है, and Singapore के meteorological services जो है moderate to smoke haze from fires in southern Sumatra and Kalimantan jo hai has been drifting towards Singapore, and we have been facing this for quite some time now. Dry conditions are expected to continue in parts of those areas, and with winds coming mainly from the east or southeast, there are still a risk of smoke haze affecting us. So some showers definitely are expected Singapore mein aaj ki date mein. So thoda अब जो है जैसा है उस हिसाब से थोड़ा सा प्लान करके निकलना ही पड़ता है। बेसिकली जो है जिनको जो जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो प्रिकॉशंस लेकर जो है वही बाहर निकले। सिंगापुर का वेदर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट अपना एक्सपोजर डेफिनेटली वी कैन कंट्रोल। सो स्टे सेफ, स्टे हाइड्रेटेड एंड कनेक्टेड रहिए। मैं अंतरा यहाँ पर आपके साथ, दिस इज मस्ती का मंत्र, इट्स अ ब्यूटिफुल ट्यूजडे मॉर्निंग। एंड उसी के साथ भाई इंडिया से हमारे जो सुनील है हमारे दोस्त, उन्होंने एक गाना रिक्वेस्ट किया है। सो ऑफकोर्स मना तो मैं किसी को करती ही नहीं हूँ। गुड मॉर्निंग,
5: it's me on the track.

कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते।